FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की आठवीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58.34 हुए हैं। हमारी आज की प्रथम सभा अब आरंभ होती है।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी BDT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार

0: सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आराध्य को निवेदित आज की वंदना। गुरुदेव जीवन में प्रकाश का संचालन करते हैं और सरलता व्याप्त करते हैं।

हे गुरुवर, जब आपकी कृपा प्राप्त हुई तो आराध्य को समझ पाए या उनका चिंतन कर पाए, आराध्य वैसे ही रहे जैसे कि दर्पण में हम स्वयं को देखते हैं। जिस भाव से हमने उनको चाहा, उस भाव से उन्होंने हमें दर्शन दिया।

सच है नाथ, जब मन उस झलक को पा जाता है, जब वो पर्दा हट जाता है और आप अपनी झलक दिखाते हैं, तो मन करता है नाच नाच करके, गा गा करके वर्णन करूं आपके सौंदर्य का।

क्या क्या कहूँ कि मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, ऐसा बालपन जिसमें माँ बाप भी वही हैं, बच्चा भी बालक भी वही हैं, लीला भी वही हैं और सब कुछ सौंदर्य नैसर्गिक भी वही हैं, ऐसा है उनका बालपन।

आज के वंदना कार्यक्रम में आपने सोनू निगम, लक्ष्मी शंकर, पिनाज मसानी, महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में कुछ भक्तिपरक रचनाएं सुनी। इसी के साथ आज का भक्तिपरक कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन बिंदु। चिंतन बिंदु में आज का विचार विषय सामाजिक विकास, आलेख अजय शर्मा का, वाचन राखी कटारा का।
1: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस विकासशील एवं विकसित युग में समाज के बिना व्यक्ति का अस्तित्व शून्य रह जाएगा। विश्व की सभी संस्कृतियों में माँ का विशिष्ट सम्मान होता है। उसका अपनी संतति हेतु अद्वितीय निस्वार्थ त्याग और समर्पण होता है। इसके लिए वो कितने भी कष्ट सहने को तैयार रहती है। किंतु हम थोड़ा गहराई से देखें कि माँ बालक को जन्म देती है, किंतु बात का पालन पोषण तो माँ के साथ साथ पिता तथा समाज द्वारा ही होता है। शिशु अवस्था से ही सुविधा, आवश्यकता, पूर्ति और विकास के अवसर प्रस्तुत करता है ये समाज। अन्न, जल, वायु, वस्त्र आदि सभी कुछ देता है समाज। अतः जिस प्रकार माँ के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता, उसी प्रकार की महानता के पद पर समाज भी विद्यमान होता है। अतः समाज की सेवा व्यक्ति का अनिवार्य दायित्व होना चाहिए। वस्तुतः समाज सेवा ईश्वरीय कार्य है। अतः व्यक्ति में बाल्यावस्था से ही उन सामाजिक मूल्यों और अभिवृत्तियों का विकास किया जाए जो समाज के हित में हैं। सामान्य रूप से सामाजिक जीवन में हम परस्पर व्यवहारों का मूल्यांकन जिस आधार पर करते हैं वे मूल्य हैं, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, दया, न्याय, दूसरों के अधिकारों के प्रति आदर भाव इत्यादि। ये सामाजिक एवं नैतिक मूल्य हैं जिनके आधार पर हम सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। मनुष्य का सामाजिक सेवा का भाव उसके चरित्र का आवश्यक अंग है। ये सामाजिक मूल्य व्यक्ति अपनी बाल्यावस्था में परिवार अर्थात माता पिता से सीखता है। यदि माता पिता के सामाजिक मूल्यों में विषमता है तो उसका बालक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे सामाजिक मूल्यों को प्रबल करने वाले संस्कारों की व्यवस्था सकारात्मकता के साथ करें। बालक के प्रत्येक सामाजिक पक्ष को प्रशंसा के साथ देखें, उसे समाज सेवा की ओर प्रेरित करें। इसके बाद विद्यालयों का कार्य प्रारंभ होता है। वहां अध्यापक बंधु ऐसी व्यवस्था करें जिससे वातावरण सामाजिक सेवा को प्रेरित करे, उसे ये कार्य अत्यावश्यक एवं सुरुचिपूर्ण लगे। भारतीय संस्कृति को त्याग और समर्पण की संस्कृति कहा जाता है। हमारी संस्कृति भौतिकवादी अर्थात भोग की नहीं है। हम न कुछ लेकर आए हैं, न कुछ लेकर जाना है। जो है सब ईश्वर का है। ईशावास्योपनिषद में उल्लिखित ये विचार प्राचीन काल से ही हमारे समाज की विशेषता कहता है। उपभोग की संस्कृति उचित नहीं है। ये समाज में अराजकता को उत्पन्न करती है। त्याग करते करते भोग करना ही वस्तुतः जीवन है। असली सुख तो हृदय में होता है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं।

0: अतः विभिन्न प्रकार की भोग विलास की सामग्री स्थाई सुख का कारण नहीं बन सकती। दूसरी ओर जिससे हमने कुछ लिया है उसके लिए कुछ करना हृदय को पुष्टि देता है, संतोष देता है, और यही संतोष सबसे बड़ा सुख है। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हमारी संस्कृति की विशेषता है ईश्वर की सर्वव्यापकता, कण कण में उसकी सत्ता का समावेश। अतः यदि अदृश्य ईश्वर का हम वास्तविक पूजन करना चाहते हैं तब दृश्य समाज का पूजन करें। हमें स्मरण रहे कि आज हम जो कुछ भी हैं समाज की देन हैं। उसके ऋण से उऋण होना तो असंभव है, किंतु उसके प्रति हमारा कृतज्ञ भाव हमें नम्र बनाए रखेगा, हमारे स्थायी सुख का मार्ग प्रशस्त करेगा। वस्तुतः समाज व्यवस्था की पुष्टि ही व्यक्ति की पुष्टि है। जिस समाज में परस्पर जितना अधिक त्याग भाव होता है वो उतना ही संगठित और विकास के पथ पर तीव्रगामी होता है।
1: सामाजिक विकास था आज का चिंतन। इस विषय पर आलेख अजय शर्मा का था, वाचन राखी कटारा का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान में आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। स्वर मन्ना डे का है, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

शिवजी की बारात में जाने के लिए देवताओं तथा दिक्पालों के समूह एकत्रित हुए। भगवान विष्णु ने विनोद में उन्हें शिवजी की वेशभूषा के प्रतिकूल बता दिया। इस पर शिवजी ने दूत भृंगी को भेजकर अपने गण बुलवाए। फिर तो ऐसी बारात सजी जिसे हिमवान की नगरी के बालक देखते ही जैसे जान बचाकर भाग चले। कैसे थे शिवजी के गण? कोई दुबला, कोई बहुत मोटा, कुछ भयंकर गहने पहने, तो किसी के हाथ में नरमुंड और पूरा शरीर ताजे रक्त में सना हुआ, कुछ के मुख गधे, कुत्ते तथा सुअर जैसे। ये सभी अनगिनत योगिनियों, प्रेत और पिशाचों के साथ चल रहे थे। जैसा दूल्हा वैसी बारात। इधर हिमवान ने अद्भुत ढंग से अपनी नगरी को सजाया था। मंडप ऐसा सुंदर जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। विवाह के अवसर पर जगत के सारे छोटे बड़े पर्वतों, वन, समुद्र और नदियों को न्योता भेजा गया था। ये सब अपने इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण कर उपस्थित हुए। बारात नगर के निकट आई तो नगर निवासी बन संवर कर नाना प्रकार के वाहन लेकर उसकी अगवानी करने चले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। स्वर मन्नाडे का था, संगीतकार थे सतीश भाटिया। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में किसान भाई और बहनें सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज का विषय रहेगा शीशम की रोपाई। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। श्रोता सुनेंगे भूले बिसरे गीत प्रातः 7 बजे। प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा प्रातः 7:18, जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रातः 7:30 पर जी हाँ, आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, जिसमें आज सुनेंगे आप भगवान दास आजाद की लिखी नौटंकी पर्यावरण। प्रस्तुति यतीन्द्र चतुर्वेदी की रहेगी। साथ ही लेंगे आनंद कार्यक्रम में ब्रज लोकगीतों का, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे श्रोता प्रातः 8:30 पर गीतांजलि क्रम में। दिन में 9 बजे आप सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज का विषय संचारी रोग कारण और समाधान। आज के विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर दिनेश शर्मा। प्रातः 9:25 पर आप सुनेंगे आबोहवा। आज का विषय पर्यावरण और आम जन। इस विषय पर वाचन रहेगा रश्मि सिंह का। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा सम्यक विकास। प्रस्तुति सत्यव्रत सिंह की रहेगी। प्रातः 9:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार होंगे जागृति प्रसाद। दिन में 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम उमंग। गीत बात और एसएमएस, जी हाँ, दिन में 12 बजे आप सुनेंगे अपना कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। सुनेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नग में, करेंगे व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412-25575। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। कलाकार होंगे आज के श्री कृष्ण। आप सुनेंगे इसे ब्रज लोकगीत। बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनी तालुक दिन में 1:15 पर, जिसमें आज चौधरी चरण सिंह पुण्यतिथि, डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन से हटे, जी हाँ, इन सब विषयों पर रहेगी आज की चर्चा। साथ ही सुनेंगे किशोरी पाठक से वार्ता आईना क्रम में, विषय गर्मियों में निखारें अपनी त्वचा। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी हमारी दूरी सभा में संध्या 5:35 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे झलकी आटे दाल का भाव। लेखक होंगी रेणु अग्रवाल। प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की रहेगी। किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण संध्या 6:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे मई जून माह की खड़ी फसल एवं धान की नर्सरी में कीट एवं रोग प्रबंधन पर डॉक्टर सुशांत कुमार से वार्ता। साथ ही लेंगे आनंद कार्यक्रम में ब्रज लोकगीतों का। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे नवरंग कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे आज आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार होंगे जियाउद्दीन। आप सुनेंगे इनसे चंद गजलें। साथ ही KL जुनेजा से सुनेंगे चंद भजन।

रात्रि 10:30 पर। कार्यक्रम सुनेंगे आप शास्त्रीय संगीत, कलाकार होंगे उस्ताद अमीर खान साहिब का। आज कार्यक्रम में सुनेंगे आप ख्याल गायन जो राग दरबारी में निबद्ध रहेगा। तो ये था विवरण हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

भूमि सुधार के लिए उपयुक्त माना गया है। पूरे देश में लगभग 70 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि का क्षेत्र है, जिसका लगभग 17% भाग उत्तर प्रदेश में ही है। इन भूमियों का सुधार अनाज उत्पादन के क्षेत्रीय प्रसार की दिशा में एक अच्छा कदम सिद्ध होगा। ऊसर सुधार के लिए जो इस समय कदम उठाए जा सकते हैं, उसमें सबसे पहली बात है खेतों का समतलीकरण करके उसकी मेड़बंदी की जाए। ऊबड़ खाबड़ जो क्षेत्र हैं उनको समतल किया जाए। अगर उसमें ढलान है, ढलान रखना है, तो 0.5% का ही ढलान होना चाहिए और खेत को करीब 1 एकड़ के टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। इनके चारों ओर मजबूत मेड़ बनानी चाहिए। मेड़ लगभग 90 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई होनी चाहिए तथा ऊपरी भाग की चौड़ाई उसकी मेड़ की करीब 20 सेंटीमीटर बना लें। ये कार्य विशेष रूप से हमको और पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन जो किसान भाई अभी तक नहीं किए हैं, इस कार्य को जल्द से जल्द संपादित कर लें। अब आती है बात मिट्टी के परीक्षण की। प्रत्येक खेत से 10 से 12 स्थानों की करीब 15 सेंटीमीटर तक की गहराई की मिट्टी खुरपी से आप निकाल करके उसको नमूने के लिए आप भेज सकते हैं। इसका लगभग 700 ग्राम नमूना मिट्टी परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए और प्रयोगशाला में इसकी जांच पीएच, विद्युत चालकता और जिप्सम की मात्रा, जैव कार्बन, उपलब्ध फास्फोरस, पोटास तथा जिंक का परीक्षण करा करके और उसकी संतुति के अनुसार ही भूमि सुधारक तथा उर्वरकों का प्रयोग इस खेत में करना चाहिए। ऊसर भूमि का सुधार के लिए जिप्सम की मात्रा उसके पीएच मान के आधार पर ही दी जाती है और मिट्टी का परीक्षण जो होकर के आएगा उसके आधार पर आप उसमें जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, शीशम की रोपाई दो तरह से की जाती है। एक तो सीधे रोपी गई टहनी और दूसरा वन विभाग में तैयार पौध की रोपाई। दोनों ही तरीके ठीक हैं। टहनियों से जड़ निकलने तथा पौधे के विकास में कुछ समय लगता है, जबकि पौध में जड़ पहले से ही विकसित होती है। पौधा रोपने के लिए मार्च अप्रैल में ही 3 मीटर की दूरी पर 50 घन सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोद लिए जाते हैं। गड्ढा खोदने के दौरान गड्ढे की ऊपरी 20 सेंटीमीटर मिट्टी को एक तरफ सुरक्षित रखा जाता है। मई महीने तक गड्ढों को खुला ही रहने देते हैं ताकि मिट्टी जनित कीट और रोग के बीजाणु नष्ट हो जाएं और जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में गड्ढों की भराई की जाती है। प्रति गड्ढा 10 से 12 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 150 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 40 से 50 ग्राम फॉलिडोल धूल को गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में मिला करके गड्ढा को भर दिया जाता है। गड्ढे के बीचों बीच थाला सहित पौधा रोपा जाता है। पौधे को मिट्टी में बिठाने के पूर्व थाले के ऊपर लगी हुई पॉलीथिन बैग को आपको हटा देना चाहिए। खरपतवारों को भी अलग कर देना चाहिए। गड्ढे में पौधों को इस प्रकार बैठाया जाए कि तना का वह भाग जहां से जड़ें निकलती हैं मिट्टी की सतह से ऊपर उठा रहे। इस हिस्से को मिट्टी में कभी नहीं ढकें। गड्ढे में पौधा बैठाने के बाद चारों तरफ से मिट्टी में ठीक से दबा दिया जाना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय शीशम की रोपाई। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, जैसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सुनिए गीता दत्त और मुकेश को फिल्म अर्धांगिनी में। गीत मजू सुल्तानपुरी का, संगीत वसंत देसाई का।

दिल हम तो हारे। जी हाँ, अभी आपने सुना गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म अर्धांगिनी में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था, संगीत वसंत देसाई का, और आइए सुनते हैं मुकेश और गीता दत्त को फिल्म अपना घर में। गीत प्रेम धवन का, संगीत रवि का।

अभी सुना आपने ये गीत फिल्म अपना घर से। गीत प्रेम धवन का था, संगीत रवि का, और आवाज़ें इस गीत में गीता दत्त और मुकेश की थी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत लेते हैं फिल्म गोदान से, गीत अनजान का, संगीत पंडित रविशंकर का, और आवाज़ें इस गीत में महेंद्र कपूर साथियों और गीता दत्त की।

अभी आप सुन रहे थे इस गीत में गीता दत्त और साथियों को, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा। इस गीत को लिए हमने फिल्म मदर इंडिया से आवाज़ें शमशाद बेगम, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की, गीत शकील बदायूनी का, संगीत नौशाद का।

0: नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठियों की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के बारे में चर्चा की।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करे।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री

0: प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनकी हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की कल उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधों की समझ और फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन्स, थाना बैरक और अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका सादगीपूर्ण जीवन, किसानों के प्रति समर्पण और जन कल्याण की राजनीति सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। अयोध्या में आज श्रीराम मंदिर परिसर के परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंबरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंबरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रदेश के कई जिलों में बीती रात तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिली है। कुछ जिलों से ओले पड़ने के भी समाचार मिले हैं। गोरखपुर और इसके आसपास के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। बदायूं और बिजनौर सहित कुछ अन्य जिलों में बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की सूचना है। फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, अम्बेडकर नगर और कौशाम्बी सहित कई अन्य जिलों में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। विभाग के अनुसार 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह भी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना सरकार का

संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

कार्यक्रम ब्रज माधुरी सुन वाली सभी भैया बहनों को हमारी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया हम जाने हैं कि हमारा जो ब्रज को रस है, ब्रज को जो आनंद है, वो यहाँ के लता पतान में है और यहाँ के बारह वन 84 कोस को जो क्षेत्र है भैया, वहाँ में हमें देखने को मिले हैं, अनुभव करने को मिले हैं। हमारो ये जो पूरों को पूरो ब्रजमंडल है, वहाँ में अनेक प्रकार के वृक्ष हुए करे हैं और उपवन हुए करे हैं। और आप जानो, जब आप दर्शन के काजे निकलो हो इन ब्रजवासी को, उसमें जो हमारे ठाकुर जी के जो धाम हैं बिन में हम देखें, हम जब कभी निधिवन में दर्शन करने जाए हैं, वहाँ में जाए तो हम देखें वहाँ पर जो लता पता हैं,

जो वहाँ की जो वृक्षावली है वह कछु अनूठी है, कछु अलग है। और कहे हैं कि ब्रज में तो ऐसे ऐसे उपवन हैं, हम बात करें, हमने दर्शन करे वहाँ ऐसे 84 कोस में कि जिन पे हम कहूँ देखें कि कहूँ कटीले कहूँ नुकीले कहें तो, है ना। तो ऐसे ऐसे भाव हैं, ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जिनमें अलग अलग बात हमें देखने को मिले। और ऐसो अधिक फलदार वृक्ष ब्रज में नाए हुए हैं, ये बात सत्य है। तो बात यूँ सत्य है कि ब्रज में जो यहाँ के लता पता हैं वो श्रद्धालुओं को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करे हैं, यहाँ को पर्यावरण अपनी ओर आकर्षित करे हैं। भैयाओं तो भैयाओं यहाँ पे हम जब कबू निकसे हैं परिक्रमा किन के काजे, और तो देखें कि जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करें, वृंदावन की करें या 84 कोस की परिक्रमा करें, तो बिन परिक्रमा परिक्रमा में हम देखें कि हम सरोवर सरोवर की कुंडन की और ब्रज के जो ऐसे ऐसे धाम हैं जिनमें हम कहें प्राकृतिक जो हमारो जो ब्रज की जो संपदा है वह को हम संरक्षित करवे को जो हमारा संदेश है वो इन परिक्रमान के माध्यम से निहित है। और हम जब कभी निकसें तो कभू हम हमारे जो पर्व हैं बिन में वो हम देखें कि हमारे कहूँ आंवला की वृक्ष की पूजा है रही है, कहूँ बरगद की वृक्ष की पूजा है रही है। तो ब्रज को तो जो सांस्कृतिक महत्व है भैयाओं, और जो सारी बातें हैं वो पर्यावरण में ही निहित हैं। भैया आज आप लियो आनंद या नौटंकी को लेखक भगवान दास आजाद, प्रस्तुति जतींद्र चतुर्वेदी की आज की नौटंकी पर्यावरण।

0: माता बहनों,
1: हाँ भाई,
0: आपको मैं एक बात और बताऊं यदि आपको पतो ना हो तो।
1: बताओ भैया, कौन सी बात है?
0: पीपल में, जो पीपल को वृक्ष है,
1: हाँ हाँ,

भैयाओ अभी आपने सुनी जे नौटंकी भगवान दास आजाद पे थे, प्रस्तुति यतीन्द्र चतुर्वेदी की हती। यही के साथ आज को परिवादरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। सभी भैया बहनों को हमारी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।
1: गया है जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए

0: रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
2: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामीनाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
3: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति

लगी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है।

0: उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले तीन दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने CBSE प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess

मीर तकी मीर के बोल, संगीत खयाम का और आवाज़ लता मंगेशकर की, फिल्म बाजार से सुना अभी आपने ये नगमा। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम में अगला गीत यशुदास के स्वर में, इस गीत को लिया फिल्म छोटी सी बात से, गीत योगेश का, संगीत सलिल चौधरी का, आवाज़ें यशुदास और आशा भोसले की।

आशा भोसले और यशोदास को सुना आपने। फिल्म छोटी सी बात से था ये नगमा। और लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत इस व्यावसायिक अंतराल के बाद।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
4: तो लेन देन
3: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
4: ओ,
3: जैसे UPI से।
4: अच्छा।
3: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
4: वो क्या है मम्मी जी?
3: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
4: आम भी ना मम्मी जी।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
9: और आइए सुने कार्यक्रम गीतांजलि में यशुदास को फिल्म चितचोर में गीत संगीत रविंद्र जैन का।

अभी आप सुने सुना फिल्म चितचोर में हेमलता और यशोदास को की संगीत रविंद्र जैन का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में लता मंगेशकर को फिल्म चित्रलेखा में गीत साहिर लुधियानवी का और संगीत रोशन का।

अभी आपने सुना फिल्म चित्रलेखा में लता मंगेशकर को। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि और अगला गीत देते हैं फिल्म अमर प्रेम से। आवाज़ें इस गीत में लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत राहुल देव वर्मन का।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अमर प्रेम में, गीत आनंद पक्षी का था। इसी के साथ आज का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम। आज स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय संचारी रोग कारण और समाधान। इस विषय पर आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा।
1: संचारी रोग दुनिया में जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद और परजीवी जैसे संक्रामक कारणों से होती हैं। ये बीमारी के रोगाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या तो सीधे संपर्क के माध्यम से या दूषित सतहों और हवा, पानी या भोजन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से फैल सकते हैं। इसमें उदाहरण है जैसे व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क, जैसे खांसना, छींकना, एक दूसरे को छूना, वायुजनक संचरण से भी जैसे कुछ बीमारियां फैलती हैं, जैसे खसरा, चेचक, COVID-19, दूषित भोजन या पानी से कुछ बीमारियां फैलती हैं जैसे हेपेटाइटिस, हैजा, कुछ बीमारियां मच्छर काटने से फैलती हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, रक्त के संपर्क में आने से भी कुछ बीमारियां

फैल जाती हैं, जैसे HIV एवं हेपेटाइटिस बी। सामान्य संक्रामक रोग सामान्य सर्दी जुखाम जैसी हल्की बीमारी से लेकर तपेदिक एड्स जैसी भयंकर बीमारी भी हो सकती है। संक्रामक रोग मुख्य तरह से चार प्रकार के रोग होते हैं। इसमें सबसे पहले है वायरल संक्रमण। वायरल संक्रमण वायरल के कारण होते हैं जो अक्सर तेजी से फैलते हैं, साथ ही शरीर की अन्य प्रणाली को भी प्रभावित कर सकते हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा, COVID-19, हेपेटाइटिस होते हैं। जीवाणु संक्रमण से फैलने वाले रोग हैं, ये जीवाणु के कारण होते हैं। इसमें TB, गले का संक्रमण, मूत्र मार्ग में संक्रमण शामिल है। फंगल के संक्रमण से होने वाले रोग में फंगस त्वचा, नाखूनों या फेफड़े में संक्रमण पैदा कर देते हैं। नाखून के संक्रमण और दाद, इनमें संक्रमण से फैलने वाले, फफूंद से फैलने वाले रोग प्रमुख हैं। अगला है परजीवी संक्रमण। ये रोग तब होते हैं जब परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये दूषित भोजन, कीड़े काटने से होते हैं। जियार्डियासिस, मलेरिया, डेंगू इन बीमारी में प्रमुख हैं। संचारी रोग का प्रसार प्रत्यक्ष संपर्क जैसे स्पर्श, अप्रत्यक्ष संपर्क जैसे दूषित सतह, वायुजनित कणों या कीड़ों के काटने और दूषित भोजन पानी के माध्यम से हो सकता है। कुछ संक्रामक रोग इस प्रकार हैं। इन्फ्लुएंजा, यह रोग इन्फ्लुएंजा वायरस ए और बी के हवा में फैलने से होता है। इसमें यकायक बुखार, ठंड लगना, छींके आना, नाक बहना, सिरदर्द और सूखी खांसी होती है। इसमें मलेरिया जैसी ठंड भी लगती है और कुछ मरीजों को तो दस्त, उल्टी भी हो जाते हैं। उचित दवा एवं आराम करने पर यह रोग 4 से 6 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि यह रोग बढ़ जाए तो फिर दिल की कमजोरी, दिल की झिल्ली पर सूजन, हड्डी में दर्द, कान में सूजन, कान के आसपास सूजन, किडनी में सूजन, आंतों से रक्तस्राव तक कर देता है। इस रोग में बिस्तर पर आराम करें, हल्की दर्द की दवा लें, गरारे करें, भाप लें, जिससे कि गले व नाक खुल जाते हैं। समयानुसार डॉक्टर से सलाह भी जरूरी है। क्षय रोग, यह रोग रोगी के खांसने छींकने से फैलता है। इसे आम तौर की भाषा में TB की बीमारी भी कहते हैं। इसका मुख्य कारण एक प्रकार का जीवाणु है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का होता है। TB रोग मुख्यतः शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य अंग भी इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं। इसके लक्षणों में प्रमुख रूप से शाम को बुखार, रात्रि में पसीना आना, वजन का कम होना शामिल हैं। ये लक्षण दिखाई दें तो चिकित्सक को दिखाना चाहिए या सरकार के क्षय रोग केंद्र में जाकर जांच कराएं। क्षय रोग का पता लगने पर रोगी को अन्य लोगों से अलग कर देना चाहिए। COVID-19, ये कोविड वायरस के कारण होने वाला COVID-19, जो कि 2020 में एक वैश्विक महामारी के रूप में बन गया था, इस रोग का प्रसार सांस द्वारा, हाथों के स्पर्श से, वस्तुओं को छूने से फैलता है। बुखार, खांसी और स्वाद और गंध का ना होना, सांस लेने में कठिनाई का होना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। हेपेटाइटिस ए और बी, ये वायरस संक्रमण के होने पर लीवर को प्रभावित करते हैं। हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन पानी से फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस बी ड्रग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यौन संपर्क और सुइयों के साझा उपयोग से होता है। यदि सही इलाज न हो तो ये रोग खतरनाक हो सकता है। इस श्रेणी में अगला रोग है HIV, यानी जिसे एड्स कहते हैं। यह रोग ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, जो श्वेत रक्त कोशिकाओं पर हमला करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। यह रक्त के द्वारा

यौन संपर्क के द्वारा और प्रसव के कारण मां से बच्चे में भी आ जाता है। यह एक जानलेवा रोग है। इस श्रृंखला में अगला रोग है मलेरिया। यह एक परजीवी संक्रमण है जो संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। यह मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने से होता है। इसमें तेज बुखार, बहुत तेज ठंड लगना, बाद में तेज पसीना आकर बुखार उतर जाना, ये लक्षण होते हैं और ये लक्षण प्रतिदिन दिखाई देते हैं। बुखार उतरने के बाद रोगी अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस करता है। संचारी रोग के कुछ सामान्य संकेत भी होते हैं। संचारी रोगों को संक्रमण की गंभीरता के प्रकार, व्यक्ति के स्वास्थ्य, लक्षणों की अवधि, व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रक्रिया आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इन लक्षणों का शीघ्रता से पता लगाने और उपचार करने से जटिलता को रोकने में मदद मिल सकती है। संक्रामक रोगों में कुछ लक्षण इस प्रकार भी हैं, जैसे बुखार। शरीर के तापमान में वृद्धि संक्रमण का पहला संकेत होता है। ये बताता है कि संक्रमण शरीर में शुरू हो गया है। फिर गला और खांसी का होना, फ्लू कोविड-19 और ऐसे लक्षण संक्रमण, अक्सर लगातार खांसी, गले में खराश, सांस में तकलीफ से शुरू होते हैं। चकत्ते या त्वचा में जलन, कुछ संक्रमण जैसे खसरा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, फंगल रोग त्वचा में स्पष्ट परिवर्तन के कारण होते हैं। दस्त व मछली होना, पाचन संबंधी लक्षण हेपेटाइटिस ए, हैजा, दूषित भोजन या पानी से फैलने वाले परजीवी रोग से संक्रमण के कारण होने वाले रोग हैं। शरीर में दर्द होना, अक्सर इन्फ्लुएंजा, डेंगू जैसे रोग वायरल संक्रमण के साथ होते हैं और शरीर में दर्द, ठंड लगना इसमें प्रमुख लक्षण है। भूख का न लगना और कम होना, यह लगातार होने वाले संक्रमण टीबी, हेपेटाइटिस बी सी, भूख न लगने का प्रमुख कारण है। संचारी रोग फैलने के कुछ कारण इस प्रकार भी हैं, जैसे कि वायरस। वायरस बहुत सूक्ष्म संक्रामक एजेंट है। ये शरीर में वायरस स्वस्थ कोशिका में प्रवेश करके और अधिक वायरस पैदा कर सकते हैं। ये व्यक्ति के खांसने, छींकने से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। वायरल रोग इस प्रकार हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, हेपेटाइटिस ए बी सी, HIV, एड्स और राइनो वायरस आदि। ये वायरस खांसने, छींकने, यौन संपर्क से दूषित होने पर, भोजन, पानी प्रदूषण होने पर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या एक ही सुई का बार बार प्रयोग करने से होते हैं। कुछ रोग जीवाणु से फैलते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी जैसे रोग पैदा करते हैं। ये बैक्टीरिया सीधे रक्त में प्रवेश करके सांस नली द्वारा, आहार नली द्वारा प्रवेश करते हैं और इनसे होने वाले रोग जैसे टीबी है, साल्मोनेला संक्रमण है जिससे टाइफाइड होता है, और आंतों में होने वाला ई कोलाई है। ये रोग हवा में मौजूद बैक्टीरिया का सांस के माध्यम से शरीर में अंदर जाते हैं। दूषित भोजन, पानी का सेवन, संक्रमित सतह के संपर्क में आना, ये सब लक्षण होते हैं जीवाणु से फैलने वाले रोगों में। कुछ रोग फंगल इन्फेक्शन से होते हैं। फंगल इन्फेक्शन अक्सर गर्म और नम वातावरण में पनपते हैं और ये त्वचा, नाखून, स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करते हैं। इनमें दाद, कैंडियासिस, फंगल इन्फेक्शन और नेल प्रमुख हैं। ये रोग प्रत्यक्ष रूप से त्वचा का संपर्क होने पर, दूषित तौलिया के संपर्क में आने पर, जूता, ग्लव्स के संपर्क में आने पर फैलते हैं। कुछ रोग परजीवियों द्वारा फैलते हैं। परजीवी का अर्थ होता है दूसरे पर आश्रित रहना, यानी ये शरीर के अंदर जाकर वृद्धि करते हैं। परजीवी से होने वाले रोग

0: में मलेरिया, जियार्डियासिस, अमीबियासिस और मच्छर के काटने से होने वाला रोग मलेरिया भी है, दूषित पानी द्वारा जो शरीर में फैलते हैं। कुछ रोग प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव है जो मानव शरीर में रहकर प्रजनन करते हैं। प्रोटोजोआ खराब और अस्वच्छता वाले क्षेत्रों में फैलते हैं। प्रोटोजोआ के होने वाले रोगों में मलेरिया प्रमुख है। मलेरिया रोग का प्रमुख कारण मादा एनाफिलीज है। छोटी माता, चिकन पॉक्स को ही छोटी माता के नाम से जाना जाता है। यह रोग वेरिसेल्ला वायरस से होता है। छोटी माता या चिकन पॉक्स से ग्रसित रोगी में छोटी छोटी फुंसियाँ होने लगती हैं। चिकन पॉक्स एक संक्रामक संचारी रोग है। यह रोग भारत में छोटी माता के नाम से जाना जाता है। श्रोताओं, कुछ चीज़ों पर अगर हम विशेष ध्यान दें तो यह रोग हम फैलने से बचा सकते हैं। जैसे अपने क्षेत्र में सफाई का विशेष ध्यान रखें, साबुन से हाथ धोकर ही कुछ खाएं पिएं, टीकाकरण। इन रोगों से बचने के लिए, रोकने के लिए एक सशक्त माध्यम टीकाकरण भी है। इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, कोविड-19, पॉक्स वैक्सीन, ये कई गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। टीकाकरण की बूस्टर खुराक लेने से व्यक्ति स्वयं और समाज की भी सुरक्षा कर सकता है। यानी कि जब वो खुद बीमार नहीं पड़ेगा तो बीमारी फैलाएगा भी नहीं, तो इस तरह से समाज की सुरक्षा भी होती है। सुरक्षित भोजन, साफ पानी पीने से जैसे टाइफाइड है, ईकोलाई है, ये बीमारी शरीर में नहीं पहुंचती। बीमार व्यक्ति से संपर्क में भी दूरी रखें। आवश्यकता पड़ने पर मास्क और दस्ताने पहने। छींकते समय मुंह नाक रूमाल से ढकें। सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। एक मजबूत इम्यून पावर बनाएं बॉडी में। इसके लिए आपको व्यायाम करना पड़ेगा, पौष्टिक भोजन करना पड़ेगा, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। और श्रोताओं, खास चीज है, तनाव से बचें। यदि आपकी प्रतिरक्षा क्षमता ठीक है तो रोग आपको जल्दी जल्दी नहीं लगेंगे। श्रोताओं, इन रोगों की रोकथाम के लिए 2024 में 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक देश के प्रत्येक क्षेत्र में संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान स्वच्छता की ओर आकर्षित करना था, ताकि स्वच्छ भारत की व्यवस्था बन सके। तो हम सोचते हैं कि अगर इन सब चीजों पर हम लोग ध्यान रखेंगे तो संचारी रोगों से बचे रहेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत। आज का विषय था संचारी रोग कारण और समाधान। इस विषय पर आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर दिनेश शर्मा। आपने सुनी इनसे यह वार्ता। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का।
1: पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहा है। गर्मी ने बीते 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रशासन एवं नगर निगम ने राहत के कार्य तेज किए हैं। जिले में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकानों की सूचीकरण कार्य के लिए कुल 1383 परगणक और 223 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। यह अभियान 20 जून 2026

0: तक चलाया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों को स्वयं गणना की सुविधा भी दी, जिसमें 7 मई से 21 मई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहारनपुर को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता संबंधी राष्ट्रीय रिपोर्ट में जिले के आंगनबाड़ी आधारित शिक्षा मॉडल को सक्सेस स्टोरी के रूप में स्थान दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन के निर्देशन में आईटीसी मिशन सुनहरा कल प्रथम संस्था एवं आईजीडी के सहयोग से संचालित इस कार्यक्रम के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के भाषा विकास, सीखने की अक्षमता और सामाजिक व्यवहार को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा मिली इस सराहना से सहारनपुर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में जिले की बेटियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर गौरव बढ़ाया है। सीबीएसई 12वीं परीक्षा परिणाम में देवबंद की छात्रा नंदिनी कुशवाहा ने 98.8% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। नैना स्वामी 98.4% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि सीमर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। हर्षिता कपूर और श्रेया संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। मेधावियों के सम्मान में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उन्हें अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दूसरी ओर शिक्षा विभाग में आरटीआई फीस प्रतिपूर्ति घोटाले को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान के निर्देश पर बीडीएम पब्लिक स्कूल शांति नगर और भगवती देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल लेबर कॉलोनी के प्रबंधकों एवं प्रध्यानाध्यापिकाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जाँच में फर्जी दावों के आधार पर सरकारी धनराशि प्राप्त करने की पुष्टि होने के बाद 32.61 लाख रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही दोनों विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस कार्यवाही से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीते दिनों जिले में बड़ी कार्रवाई हुई। देवबंद में एंटी करप्शन विजिलेंस टीम ने बिजली विभाग के SDO दिनेश कुमार मौर्य और संविदा कर्मी मोहम्मद शाकिर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता मोहम्मद एहरार ने आरोप लगाया था कि आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन और सर्वे सही कराने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर सहारनपुर की उप श्रम आयुक्त वंदना को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया। उन पर एक निजी अस्पताल निर्माण मामले में नियम विरुद्ध 18 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी करने और श्रम बोर्ड को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। IMA अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण शर्मा की शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सहारनपुर में ईद उल अजहा का पर्व पूरे धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर में जिले भर की ईदगाहों व मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। DIG अभिषेक सिंह, DM अरविंद कुमार चौहान और SSP अभिनंदन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बताया,
1: बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे नमाज जो संपन्न हुई है, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जहाँ पे उनके डिजाइनेटेड प्लेसेस थे वहाँ पे नमाज अदा की है और इस अवसर पे मैं सभी जनपद वासियों को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ।
0: सहारनपुर में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन समेत 32 लोगों पर थाना सदर बाजार में FIR दर्ज हुई। उन पर DIG कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालकर चक्का जाम करने का आरोप है। मामला मोनू कश्यप हत्याकांड में जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन से जुड़ा है।
2: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख व स्वर है रविन्द्र कुमार का।
3: जनपद हापुड़ की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा पर्व का गंगा स्नान का पौराणिक महत्व है। श्रद्धालुओं का काफी जनसैलाब उमड़ा। गंगा दशमी के ही दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित UP के कई जनपदों से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। गंगा स्नान को लेकर हापुड़ जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के पुख्ता इंतजाम किए। सुरक्षा की दृष्टि से काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नाव और गोताखोर भी लगाए गए। वहीं महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम बनाए गए। जनपद हापुड़ में भीषण गर्मी का प्रकोप अधिक बढ़ने से इसका

0: के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में बाहर निकलना काफी मुश्किल भरा है। हीट वेव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोगों को स्वस्थ रखने के लिए जनपद हापुड़ का स्वास्थ्य विभाग और जिला आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि तेज धूप से बचें, हो सके तो छाते या कपड़े का प्रयोग करें, पानी नियमित रूप से पिएं, सुबह 10 से 4 बजे तक किसान खेतों में काम करने से बचें, ताजा खाना और फलों का सेवन करें। अधिक गर्मी से हीट वेव के चलते स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि आम जनता गर्मी से बचाव करे ताकि स्वास्थ्य पर कुप्रभाव न पड़ सके। जनपद हापुड़ में जिला अस्पताल में पहुँचने वाले रोगियों के सभी वार्डों में एसी लगाए गए हैं। इसके अलावा बाहर जगह जगह कूलर लगाए गए हैं। वातानुकूलित इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को भर्ती किया जा सके। जिला अस्पताल के मुख्य अधीक्षक ने रोगियों के लिए ओआरएस के घोल के कैंपर की व्यवस्था की है। वहीं अस्पताल में आने वाले रोगियों को ओआरएस के पैकेट भी प्रदान किए जा रहे हैं। लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने और खानपान में विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। जनपद हापुड़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में एक माह तक चलने वाले शहीद मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में शहीदों को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जनपद हापुड़ खाद्य विभाग की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। जिले में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले गोदाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी माल को नष्ट कराया। जनपद में एक गोदाम में भारी मात्रा में लाल सॉस बनाई जा रही थी जो मिलावटी सामान से बनाई जा रही थी। इसके साथ ही सॉस को गाढ़ा करने के लिए कई प्रकार के केमिकल सामान और अन्य रंग इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने चंडी रोड मेरठ गेट पुलिस चौकी के पास एक दुकान पर छापा मारा जहां टीम ने 30 पेटी सॉस को सीज कर दिया। इसमें 360 बोतल पैक थी। इसकी अनुमानित कीमत 22,680 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 335 किलो सॉस को नष्ट कराया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 16,450 रुपए बताई जा रही है। सॉस के नमूने लेकर जाँच के लिए भेजे गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऊर्जा बचत की अपील को साकार करने एवं एकल वाहनों के प्रयोग के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पीपीपी मॉडल पर आधारित गांव-गांव तक बस सेवा प्रदान कर रही है। जनपद हापुड़ में इस मॉडल के तहत एक बस का अनुबंध करके गाँव तक बस सेवा शुरू की गई है जिसका शुभारंभ रोडवेज डिपो से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी एवं सदर विधायक विजयपाल आरती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही योगी आदित्यनाथ की सरकार गांव-गांव तक सुविधा उपलब्ध करा रही है। अब ऐसे गाँव में भी बस पहुँचेगी जिन गाँवों में आने जाने की कोई साधन नहीं थे। जनता और छात्र छात्राओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यह योजना ग्रामीणों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। जनपद हापुड़ में पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कोविड 19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए 23 वर्ष पूर्ण होने पर देने का प्रावधान के तहत जिला अधिकारी ने चेक प्रदान किया। जनपद हापुड़ में उक्त योजना के अंतर्गत 11 बच्चों को चिन्हित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की हलचल। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये है
2: FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आबो हवा। आज का विषय है पर्यावरण और आम जन। इस विषय पर आलेख वाचन रश्मि सिंह का।
3: सभी जीव अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। अपने जीवन चक्र को सतत बनाए रखने के लिए पर्यावरण से समायोजन करते हैं। पर्यावरण के परिवर्तन के साथ उनके समायोजन की क्रियाविधि बदलती रहती है। जिस प्रकार जलवायु ने जीवों का इतिहास निर्मित किया है,

इसी प्रकार मनुष्य ने जलवायु सहित अन्य जीवों को सर्वाधिक प्रभावित किया है। आज जीव मंडल के समक्ष उपस्थित कठिनाइयों के लिए मनुष्य जिम्मेदार है। प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य को अपने पर्यावरण का उचित बोध नहीं है? उसने इतना बड़ा संकट उपस्थित किया है। मनुष्य की क्रियाशीलता से जीव मंडल की गुणवत्ता में तीव्र परिवर्तन आया है। मानव समाज ने अपने भौतिकता के बल पर विकसित विज्ञान और तकनीक की मदद से अपने निवास को सबसे अधिक बदला है। उसका परिवर्तनकारी रुख पर्यावरण को बदल डालने तक पहुंच गया है। उसे पर्यावरण के निर्माणकर्ता के रूप में समझा जाने लगा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि मनुष्य को पर्यावरण का सही ज्ञान है? वर्तमान अनुभव यही प्रमाणित करता है कि उसका ज्ञान अधूरा है, क्योंकि सही ज्ञान होता तो मनुष्य वो गलतियां नहीं करता जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाती है। कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी के कारण वायुमंडल का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो गया है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को छानता है और हमें अत्यधिक गर्मी से बचाता है। पर्यावरण के प्रति मनुष्य की चेतना जन्म से जागृत होती है, क्योंकि जन्म पर्यावरण की देन है। मनुष्य और प्रकृति का संबंध सहजता पर आधारित है। पर्यावरण जीवन का आधार है। पर्यावरण जनित संसाधन ही मानव समाज की प्रगति के आधार हैं। यही नहीं, इन संसाधनों का उपयोग मानव समाज के दुख का कारण भी है। उदाहरण के लिए, वायु और जल जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य तत्व हैं। इनके बिना हम प्रकृति की स्थायी नहीं बना सकते। इसके लिए ही सरकार ने आमजन और देश को नारा दिया है, जल जीवन है, इसे बचाएं। लेकिन आज औद्योगिक देशों में वायु और जल प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि वहाँ स्वस्थ जीवन की उलझन पैदा होने लगी है। कई देशों में जल का नितांत अभाव है। मनुष्य जीव मंडल का एक सदस्य मात्र न होकर सामाजिक पारिस्थितिकता का अंग भी है, जिसमें पर्यावरण के अनुसार आयुर्वेद में खान पान, आहार विहार, कर्म आदि की व्यवस्था बताई गई है। श्रोताओं, अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि जल पर्यावरण को बचाने और भविष्य को बचाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। आज का विषय पर्यावरण और आम जन। इस विषय पर आलेख वाचन था रश्मि सिंह का। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। प्रातः के 9:30 होने को हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गांधी चर्चा सम्यक विकास, प्रस्तुति सतव्रत सिंह की।

सादा जीवन उच्च विचार बापू के प्रथम व्यवहारिक उपदेश है। और यदि हम गौर से विचार करें तो ये सब बातें उनके दैनिक जीवन में सामान्य थीं। एक बार एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैंने देखा कि आपके घर विदेशी फर्नीचर से ठसाठस भरे हुए हैं, सभी प्रकार की खूबसूरत विदेशी साज सज्जा की वस्तुओं से सजे हुए हैं, जब मैंने देखा कि आपके घरों में अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारी इस पावन भूमि में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तो मैंने आरंभ में ही आपसे कह दिया कि मुझे खुशी भी हुई है और दुख भी। मैं आपसे कहता हूँ कि इतने अधिक फर्नीचर के बीच मुझे घुटन का सा अनुभव हुआ है। मुश्किल से इस फर्नीचर के बीच बैठने के लिए या खुलकर सांस लेने के लिए भी जगह नहीं है। आपके यहाँ की कुछ तस्वीरें तो भी वत्स हैं और देखने लायक नहीं हैं। मुझे महाभारत काल के समृद्ध लोगों के पापों और उनमें से कुछ की सादगी के वर्णन याद आते हैं, जिनमें हमें चाहिए कि हम अपने धन का जैसा दिखावा यहाँ करके प्रतीत होते हैं वैसा न करें। हमारे देश के समशीतोष्ण वातावरण और जलवायु में इन चीज़ों के प्रदर्शन की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। इनसे शुद्ध वायु के मुक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है और इनमें धूल और हवा में तैरने वाले करोड़ों कीटाणु रहते हैं। यदि आप मुझे चेट्टिनाड के इन तमाम स्थानों की सजावट का ठेका दे दें तो मैं 10 गुना कम पैसों में सजावट कर दूंगा और आज की अपेक्षा कहीं ज़्यादा गुंजाइश और ज़्यादा आराम प्रदान करूँगा, और साथ ही भारत के कलाकारों से यह प्रमाण पत्र भी हासिल कर लूँगा कि आपने जितना किया है उससे कहीं ज़्यादा कलात्मक ढंग से मैंने आपके घरों को सजा दिया है। मैं ये भी कहूँगा कि आपके ये जो सारे महल बने हैं इनके पीछे आपके बीच सहयोग की तथा सामाजिक प्रभाव या समाज कल्याण की कोई भावना नहीं रही है। यदि आप पारस्परिक कल्याण के लिए और अपने बीच रहने वाले खेती और जनता के कल्याण के लिए चेट्टियों का एक संघ बना लें तो आप वास्तव में चेट्टिनाड को एक मनोहर माया नगरी बना सकते हैं जो भारत के सभी लोगों को आकर्षित करेगी और तब वे आपके जीवन की सादगी को देखकर संतुष्ट होंगे। ये तो मैंने आपके जीवन के बाह्य पक्ष के बारे में

कहा, मैं आंतरिक शुद्धता के पक्ष में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे सामान्य लोगों और अमीर मित्रों का विश्वास भाजन होने का सौभाग्य प्राप्त है और मुझे जानकारी है कि और मेरा अनुमान भी है कि आप धनवान चेटी लोग उन कमजोरियों से मुक्त नहीं हैं जो संसार भर के सभी धनवानों में आम हैं, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। हमारे सामने जनक का प्रसिद्ध उदाहरण है। उनके पास अपार धन था, फिर भी वह पवित्रता के साक्षात अवतार थे। इसलिए मैं जीवन की व्यक्तिगत पवित्रता पर जोर देता हूँ। वास्तव में यही मनुष्योचित जीवन का सार है। मनुष्य का मनुष्यत्व इसी में है कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य प्रत्येक स्त्री को उसकी आयु के मान से बहन, माँ या बेटी समझे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे चेट्टी भाई मनुष्य के लिए अपने प्रति जितनी शक्ति बरतना संभव है उतनी शक्ति बरतें और कड़ाई से आत्मनिरीक्षण करें। आपका दानवी बुद्धिमता पूर्वक होना चाहिए। मैंने सुना है कि आप मंदिरों के निर्माण पर खूब धन खर्च करते हैं। थोड़े बहुत मंदिर बनवाना तो अच्छी चीज है, लेकिन संभव है इस तरह से जरूरत से ज़्यादा मंदिर बन जाएं। ऐसे सोचना एक भयंकर अंधविश्वास है कि हमारे एक ऐसा भवन बनवा देने से जिसे मंदिर कहा जाता है भगवान उसमें निवास करने ही लगते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं भारत में ऐसे बहुत मंदिरों को जानता हूँ जहाँ उसी प्रकार ईश्वर का निवास नहीं है जैसे वैश्यालय में नहीं होता। आप जैसे कुछ अच्छे मित्रों ने मुझे तथाकथित अस्पृश्यों के लिए मंदिर बनवाने को कुछ धन दिया है। मैंने कह दिया है कि अगर मुझे मंदिर के लिए कोई साधु पुरुष नहीं मिलता और उसके प्रबंध के लिए ईमानदार न्यासी नहीं मिलते तो मैं यह राशि मंदिर बनवाने पर खर्च नहीं करूँगा। मेरी समझ में इस समय खादी के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए धन देना ही किसी भी भारतीय के लिए सर्वोत्तम दान देना है। हमारे धनवान मित्र तथाकथित गरीबों को भोजन कराने का बड़ा शौक रखते हैं। इस प्रकार भोजन देने के लाभ पर मैंने अक्सर शंका व्यक्त की है। भगवत गीता कहती है कि अच्छा दान वही है जो सुपात्र को दिया जाए। इसीलिए अंधों को, लंगड़े लूलों को और उन लोगों को भोजन कराना ठीक होगा जो किसी न किसी कारण से आजीविका कमाने के लायक नहीं है। लेकिन मैं साहसपूर्वक कहता हूँ कि यदि आप सब लोग आपस में तय करके भारत के गाँव में 50,000 लोगों को मुफ्त भोजन देने के लिए एक निश्चित धनराशि अलग नियत कर दें तो यह एक बहुत बड़ा पाप होगा। जिस आदमी के हाथ पांव ठीक हैं और जिसके सामने करने को कुछ काम है वह मनुष्य मुफ्त भोजन कराने के योग्य नहीं है। भारत की सबसे बड़ी जरूरत है ग्रामवासियों के लिए उनके घरों में काम मुहैया कराने की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप खादी की प्रगति के लिए जो एक रुपया भी देते हैं उसका अर्थ है 16 स्त्रियों का 1 जून का भोजन जिससे कि उन्होंने मेहनत करके कमाया है। इसी प्रकार भारत में मवेशियों जैसा पापपूर्ण वास हो रहा है उसके लिए दिए जाने वाला दान भी उतना ही बड़ा दान है। जो व्यक्ति एक अच्छी गौशाला और एक चमड़ा कमाने का कारखाना चलाता है वह कई सौ मवेशियों की रक्षा करता है। यदि आप चेट्टीनाड को अपने रहने और मेरे जैसे हर अभ्यागत के लिए थोड़ा आराम पाने योग्य एक आदर्श स्थान बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप उसे न केवल सफाई और स्वच्छता में आदर्श ही बना देंगे बल्कि आपके यहाँ अच्छे मवेशी खाने होंगे जहाँ सभी प्रकार के पशु रखे जाएंगे। और यह भी अपेक्षा करूँगा कि आपके यहाँ एक आदर्श डेयरी होगी जो आपको आसपास के गरीब लोगों को सस्ते भाव पर अच्छा और शुद्ध दूध वितरित करेगी। मैं यह भी अपेक्षा करूँगा कि आप यहाँ चमड़ा कमाने के कारखाने बनाएंगे और वहाँ मरे हुए पशुओं का चमड़ा प्राप्त करने उससे अमीरों और गरीबों के लिए जूते बनाएंगे। इसी प्रकार आपकी दानशीलता लाभ मुक्त रूप से उन तथाकथित अस्पृश्यों को भी प्राप्त होनी चाहिए जिन्हें आपने अभी तक अपने पैरों तले रौंदा है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि
सम्यक विकास की

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा, प्रस्तुति सत्यव्रत सिंह की थी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं जागृति प्रकाश। आइए सुनते हैं इनसे ये भजन, रचना कबीर दास की है।

आपने सुना कबीरदास की इस रचना को जागृति प्रकाश के स्वर में FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज की कलाकार जागृति प्रकाश। आइए सुनते हैं इनसे ये अगला भजन, रचना सूरदास की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज की कलाकार थी जागृति प्रकाश, आपने सुने इनसे भजन। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
0: आपका बहुत

0: आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
1: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
0: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
1: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
0: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
1: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
0: जी, ये बात तो है।
1: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: जी हाँ, और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
1: जी,
0: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
1: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
0: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
1: जी,
0: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
1: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
0: काले गुलाब?
1: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
0: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
1: जी,
0: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
1: जी,
0: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
1: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
1: जी,
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी, वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
1: जी,
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल,
0: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
0: जी,
1: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या।

0: को हम खेलने जाते,
1: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर

0: करते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को, मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निसंदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा। और सर्विस सीधा सेंटर में डालना। ओके।
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी NCC के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर NCC का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले

0: नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
1: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
2: धन्यवाद श्रीमान।
1: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
2: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
1: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
2: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
1: बेस्ट ऑफ लक।
3: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
0: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
3: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
4: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह नंबर 1 और यह नंबर 2।
5: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।

0: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
1: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
0: आक्रमण हुआ
1: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
2: जय महाकाली!
1: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
3: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
1: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो 3rd बंकर की ओर बढ़ने लगे।
0: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
1: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और 3rd बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
0: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के 4th बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो 4th बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
4: ना छोड़नू, ना छोड़नू।

0: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये नगमा। इस गीत को लिया हमने फिल्म अक्स से। आवाजें इस गीत में सुखविंदर सिंह और वसुंधरा दास की।

सुखविंदर सिंह को अभी आपने सुना, वसुंधरा दास को फिल्म अक्स में। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को लिया फिल्म ब्लफ मास्टर से। आवाज़ इस गीत में सुनिधि चौहान, अभिषेक बच्चन और साथियों की।

अभी आपने सुना फिल्म ब्लफ मास्टर से ये गीत। आवाज़ें इस गीत में सुनिधि चौहान और अभिषेक बच्चन की थी, संगीत विशाल शेखर का था। और आइए सुनते हैं फिल्म संगीत में ये अगला गीत। इस गीत को लिया फिल्म धुरंधर से। आवाज़ें इस गीत में अरिजीत सिंह की, बोल इरशाद कामिल के।

शायद सच देव का संगीत और बोल इरशाद कामिल के, और आवाज़ दे रहे थे गीत में अरिजीत सिंह, फिल्म धुरंधर से ये गीत। और आइए सुनते हैं रोड साइड रोमियो से, फिल्म से ये गीत, आवाज़ कुणाल गंजावाला की।

अभी आपने सुना फिल्म रोड साइड रोमियो से ये गीत। आवाज इस गीत में कुणाल गांजावाला की थी। और आइए सुनते हैं फिल्म धुरंधर से ये गीत। आवाज इस गीत में नबिल एल होरी, शशवत सचदेव, संगीत शशवत सचदेव का और गीत यूसुफ का।

अभी आपने सुना खालिद और साथियों को फिल्म धुरंधर में, और आइए सुनते हैं फिल्म बरसात से ये नगमा। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आवाज़ इस गीत में अलीशा चुनॉय और इश्क बैक्टर की, गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का।

अभी आपने सुना फिल्म बरसात में अलीशा चुनॉय को, और आइए सुनते हैं सोनू निगम और अलीशा चुनॉय को फिल्म मुझसे दोस्ती करोगी। जी हाँ, इस फिल्म से ये नगमा गीत आनंद बख्शी का, संगीत राहुल शर्मा का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म मुझसे दोस्ती करोगी। इस फिल्म से ये नगमा, आवाज़ें सोनू निगम और अलीशा चिनॉय की थी। गीत आनंद बख्शी का, संगीत राहुल शर्मा का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज के कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं देवराज कृष्ण दीक्षित।
1: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हाँ श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 STD कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी।
3: नमस्ते सर।
2: नमस्कार,
3: रामेश्वर चौधरी बोल रहा हूँ जिरौली से।
2: चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
3: धन्यवाद सर आपके लिए। कैसे हैं सभी लोग?
2: सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आपके परिवार में कैसे हैं सब?
3: सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं सर, आशीर्वाद है भगवान का।
2: और गर्मी कैसी चल रही है?
3: बस गर्मी का तो चारों तरफ गर्मी का ही हल्ला है सर।
2: जी हाँ, तेज तापमान है।
3: जी जी जी,
2: अपना ध्यान रखिएगा।
3: हाँ, सभी अपने घर पर ही रहते हैं, लेकिन किसान नहीं, खेती का तो सर सुबह शाम काम करना ही होता है।
2: जी हाँ, कर्म ही जीवन है, कहा है श्री कृष्ण ने।
3: जी जी जी बिल्कुल।
2: बताइए आज क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
3: हिमालय की गोद में फिल्म का नाम है सर, पुरानी फिल्म है
2: जी,
3: और उसका एक गाना है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली।
2: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये खूबसूरत।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हाँ नमस्कार सर,
0: नमस्कार।
1: मैं ब्रिश्रोता में गाँव कुआ से भजन लाल बोल रहा था सर।
0: स्वागत है भजन लाल जी, कैसे हैं?
1: हम तो सर ठीक है, आप बताइए कुशल हैं?
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आपके गांव में कैसे हैं सब?
1: सब आनंद है सब, इस समय कोई बात नहीं है, सब मंदिर नया बन गया है गांव में
0: जी।
1: सब खुश है
0: जी जी
1: भंडारा बहुत अच्छा हुआ, सब लोग तारीफ कर रहे हैं
0: जी जी। गर्मी का मौसम है, अपना ध्यान रखिएगा।
1: हाँ ध्यान है सर, हम घर से 11 बजे फिर घर से नहीं निकलेंगे सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही करते हैं आप
1: जी सर।
0: आज भजन लाल जी क्या सुनवाएं आपको?
1: हंसते जख्म का एक गाना था, किस्मत से मिल गई हो मिलके जुदा न हो, ऐसा गाना है एक।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का यही गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारा कॉल उठाने के लिए सर। नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: महोदय को मेरा सादर नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र महेश चंद सदर बाजार से सर।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: हम भी आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर।
0: कैसे हैं महेश जी?
1: हाँ बिल्कुल मस्त है, व्यस्त है सर, और आपकी आकाशवाणी टीम और आप अच्छे होंगे ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है सर।
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं।
1: गर्मी में आप क्या कहना चाहेंगे सर हमारे श्रोताओं के लिए?
0: हम तो अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि गर्मी का मौसम है, अपना ध्यान रखिए और घर से बाहर धूप में मत निकलिए। अपने जरूरी काम सुबह या शाम में करें, और जब भी घर से बाहर निकलें सिर पर अंगोछा या कोई ऐसा कपड़ा या टोपी अवश्य लगा कर निकलें। भरपेट पानी पिएं, अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें।
1: सारे श्रोता आपकी बात सुन करके उसका उपयोग करें तो शायद गर्मी से जहां तक है वहां बहुत राहत मिल सकती है सर।
0: जी बिल्कुल, बताइए आज महेश जी कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
1: अधिक मास की वजह से सर इस समय घर में सब अपने भगवान की पूजा पाठ में लगे हुए हैं सर।
0: जी
1: मुझे
0: हाँ,
1: हाँ सर मुझे गीत सुना है, तन मन धन सब है तेरा, तेरे बिन क्या है मेरा।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: भैया जी योगेश जांगड़े भी मैं तरह छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: स्वागत है भैया जी आपका।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं योगेश जी?
1: बढ़िया है, अच्छा है।
0: और गर्मी कैसी है आपके यहाँ?
1: बहुत गर्मी है भैया।
0: जी हाँ, गर्मी का मौसम इस समय चल रहा है, लेकिन आने वाला समय खुशनुमा होगा बरसात जब होगी। और कैसा चल रहा है काम आपका?
1: भी खाली पी लिया, आराम है भैया। खेती बाड़ी गर्मी के 2-3 महीनों में बंद रहता है हमारे यहाँ।
0: अच्छा बताइए, आज योगेश जी कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
1: फिल्म राजा और रंक से सुनवा दीजिए, और फिरकी वाली तो कल फिर आना।
0: नहीं फिर जाना अपनी जुबान से
1: जी जी
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: बढ़िया गाना सुना दो साहब। एक
0: कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं साहब हेमंत शाह बोल रहा हूँ धौलीबाग
0: हेमंत जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: से। हाँ
0: कैसे हैं?
1: सब बढ़िया साहब। एक गाने सुनने की इच्छा कर रही थी, बहुत दिमाग नंबर लगा ये।
0: जी, घर परिवार में सब ठीक है आपके?
1: हाँ सब ठीक है सर, काम चल रहा है घर में, राजनीति में लगे पड़े हैं, गर्मी पड़ रही है।
0: जी, बताइए आज क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
1: ये मुकद्दर का सिकंदर सर,
0: कौन सा गीत सुनेंगे इस फिल्म का?
1: रोते हुए आते हैं सर,
0: हंसता हुआ जो जाएगा,
1: जाएगा जाएगा।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की थी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण।

कलयुग और रामायण इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, स्वर थे महेंद्र कपूर और साथियों के। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म अक्स से। इस गीत को स्वर दिए हैं अमिताभ बच्चन, नंदिता दास और कविता मुंदरा ने।

हरि दर्शन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, स्वर थे लता मंगेशकर के। आइए सुनते हैं नागमणी फिल्म का ये गीत, स्वर हैं सुरेश वाडेकर के।

स्वदेश इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। स्वर थे मधुश्री, विजय प्रकाश, आशुदेव, आशुतोष के। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म गीत गाता चल से। इस गीत को स्वर दिए हैं आरती मुखर्जी ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म गीत गाता चलकर। ये गीत स्वर थे आरती मुखर्जी के। इस गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओ, जैसे UPI से।
2: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आप भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
1: हर लेन देन अब है आसान।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी

0: की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हमारी जनगणना हमारा विकास।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं श्री कृष्ण।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत, प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रजलोक गीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्री कृष्ण के स्वर में कुछ ब्रजलोक गीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। और श्रोताओं, आपके एसएमएस हमारे पास आ चुके हैं। और देखो, जैसा कि हमारा जो इस समय जो चल रहा है, गर्मी के बाद में एकदम मौसम बदल रहा है और तेज़ हवाएं चल रही हैं, आंधी और कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा का भी अनुमान आ रहा है। और आप सभी के जो फ़ोन हैं उन पर भी लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें इस समय अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। तो अभी जो हमारे पास में एसएमएस आए हैं इन श्रोताओं के, डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजाबिये, राधिका गजाबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजाबिये, ये हैं श्रोता। जिला रामपुर से

अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। और ये श्रोता हमें एसएमएस भेज रहे हैं बीड शहर महाराष्ट्र से, नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, अंजलि, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और साथ ही ये श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार, कुमारी कृष्टि पटवा। और ये श्रोता हैं पिपरिया से, कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता। और ये श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा। आप सभी ने सुनना चाहा है ये गीत।

श्रोता हैं संभाजी चौक नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति, आशा, दीक्षा बागमारे और ये श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं सहदेव दामोदर, शशिकला, सुमेश, साधना, इस्लामपुर महाराष्ट्र से। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। आप सभी ने सुनना चाहा है ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और SMS। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रजलोक गीत। कलाकार हैं श्री कृष्ण।

आज ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में एक और लोकगीत।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रजलोकगीत, प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज लोकगीत, प्रसारण किया जा रहा था आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद

0: का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरु मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरु मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी 1:15 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम वनितालोक। आज के कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे चौधरी चरण सिंह पुण्यतिथि एवं डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन से हटें, खुद से मिलें। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता, गर्मियों में निखारें अपनी त्वचा। वार्ताकार होंगी किशोरी पाठक। दिन में 1:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा दिन में 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी के साथ।

युवाणी कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत चर्चा के विषय रहेंगे चौधरी चरण सिंह पुण्यतिथि एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा झलकी आटे दाल का भाव, आलेख रेणु अग्रवाल का, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनिएगा संध्या 6:15 पर। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे चौधरी चरण सिंह पुण्यतिथि एवं पॉली हाउस फार्मिंग। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता, मई जून माह की खड़ी फसल एवं धान की नर्सरी में कीट एवं रोग प्रबंधन। वार्ताकार होंगे डॉ. सुशांत कुमार। संध्या वंदन, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 6:45 पर।

ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में ब्रज नवकथा सुनिएगा संबंध। वार्ताकार होंगे संतोष शर्मा। समय रहेगा संध्या 7:05। संध्या 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम शाम सुहानी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 8:00 से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8:30 पर। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नवरंग का समय रहेगा रात्रि 9:15। रात्रि 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जियाउद्दीन के स्वर में कुछ गजलें, साथ ही आप सुनेंगे KL जुनेजा के स्वर में कुछ भजन। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे उस्ताद आमिर खान साहिब। आज आप इनसे सुनेंगे ख्याल गायन। देशगान

0: अभी आप शालिनी माथुर के सुर में सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: खोलूं?
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब बहने सुनेंगे कार्यक्रम वनिता लोक।

ख्वाब सारे अपने नहीं होते, कुछ राहों में छूट जाते हैं, जो साथ चल पड़े हर मोड़ पर वो सब अपने बन जाते हैं। वक्त की धूप जब तेज हुई, साए भी बदल जाते हैं, हर ठोकर ही सबक दे जाती है, इन्हीं से हम संवर जाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी सखी सहेली खुशबू। स्वागत है आप सभी का वनिता लोक कार्यक्रम में।

जी हाँ बहनों, हर रोज़ की तरह हम आज आपके साथ उपस्थित हैं और आपके लिए एक नई चर्चा के साथ। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज है चौधरी चरण सिंह पुण्यतिथि। जी हाँ, हम सब

को भली भांति इन सभी से हम परिचित हैं। मिट्टी की खुशबू जिनकी पहचान बन गई, किसानों की आवाज़ जिनकी शान बन गई, ऐसे महान नेता को शत शत नमन। चरण सिंह जी की याद आज सभी का सम्मान बन गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि हर वर्ष 29 मई यानी आज ही के दिन श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है। वो किसानों के मसीहा कहलाते थे और अपना पूरा जीवन गांव, गरीब और किसानों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया था। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने भारतीय राजनीति में ईमानदारी, सादगी और किसान के हितों के लिए एक अलग पहचान बनाई। चौधरी चरण सिंह जी का मानना था कि भारत की असली ताकत गांव और किसानों में बसती है। उन्होंने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और ग्रामीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वे कुछ समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहने वाले नेता के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी पुण्यतिथि हमें ये संदेश देती है बहनों कि देश की उन्नति तभी संभव है जब किसान खुशहाल और मजबूत हो। आज भी लोग उन्हें सादगी, ईमानदारी और किसान हितैषी नेता के रूप में याद करते हैं, जिसने खेतों की तकदीर संवारी थी, हर किसान की आंखों में खुशहाली उतारी थी। ऐसे जननायक को हमारा प्रणाम, जिनकी सोच आज भी सबसे न्यारी है।

बहनों, इस प्यारे से गीत के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ मौसम की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गर्मी का मौसम हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि इसमें लंबे धूप भरे दिन और बाहर घूमने फिरने के कई मौके मिलते हैं। लेकिन सूरज की रोशनी और गर्माहट के साथ साथ त्वचा को नुकसान पहुंचाने का भी खतरा बढ़ा देता है, जिसका त्वचा पर लंबे समय तक असर रहता है। गर्मी के मौसम में त्वचा की देखभाल का अच्छा रूटीन अपनाना त्वचा की सुरक्षा और उसे पूरे मौसम स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी विषय पर आपको आईना क्रम में ये वार्ता सुनवाते हैं। विषय है गर्मियों में निखारें अपनी त्वचा। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं किशोरी पाठक।

गर्मी बहुत है और इस गर्मी से सबसे ज़्यादा अगर असर कहीं पर होता है तो वो हमारी स्किन पे होता है। हमारी स्किन गर्मियों में झुलस जाती हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, गर्मियों में सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम होती है यानी कि स्किन के रैसेस होना, और जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनकी स्किन में दाने भी हो जाते हैं। तो बहनों, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि आप अपनी स्किन की देखभाल कैसे करेंगे, वो भी घर बैठे, क्योंकि पार्लर में जाके करवाना सभी बहनों के लिए संभव नहीं होता है। तो आप घर बैठे कैसे करेंगे, तो ये आप आज मैं आपको बताऊंगी। जैसे अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जब गर्मी बहुत होगी तो पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, और जब ऑयली स्किन में पसीना आएगा तो आपको दाने भी निकलेंगे, और दाने निकलेंगे तो आप उससे परेशान हो जाओगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑयली स्किन वाले हमेशा अपने घर में कोई साबुन ना यूज़ करके मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जो आपकी बॉडी से आपके एक्स्ट्रा ऑयल को अपने अंदर एक्सेस करती है यानी कि खींचती है। तो बहनों, अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाने हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, तो आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा खीरे, कुकुम्बर जिसको बोलते हैं, वो मार्केट में उपलब्ध है, तो आप बहनों उसका जूस, उसका रस आप अपने चेहरे पे लगा सकती हैं। इससे आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और आपको दानों से छुटकारा भी मिल सकता है। दूसरी बात बहनों, कि गर्मियों में जिनकी ड्राई स्किन होती है उनकी स्किन पर रेडनेस या रैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनकी स्किन में ऑयल की प्रॉब्लम इतनी नहीं होती जितनी कि रैसेस की प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम हम क्या करें, उस टाइम भी बहनों हम मुल्तानी मिट्टी या कोई ठंडी चीज़ जैसे कि हम दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहनों, दही बहुत ठंडी तासीर वाली होती है, तो अगर हम प्रतिदिन अपने चेहरे को दही से धोएं और उसके बाद हम अपना चेहरा देखेंगे कि हमारा चेहरा एकदम चांद की तरह खिला खिला सा नज़र आ रहा है। जिस तरह शाम को चांद खिलता है उसी तरह आपका चेहरा भी खिला खिला नज़र आएगा। अब बहनों बात आती है कि हम इतनी गर्मी में क्या पिएं, क्या खाएं। तो सबसे पहले अगर आपको अपनी स्किन की ध्यान रखना है तो आपको पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना है। पानी यानी कि आपके शरीर में गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में सबसे पहले हमारी स्किन से पानी की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो बहनों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। पानी चाहे वो हम सादा ले सकते हैं, चाहे हम जूस ले सकते हैं, सिकंजी ले सकते हैं, किसी भी अवस्था में हमारे शरीर को कम से कम 8 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो कि गर्मी में हमें अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि पानी से स्किन ग्लो करेगा। कोई भी चीज अगर सूखी मिट्टी होगी तो उसमें ड्राइनेस होगी, और ड्राइनेस होगी तो उसमें दरारें दिखेगी। अगर हम उस दरारों को ढकना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस मिट्टी में पानी डालते हैं। तो इसी तरह हमारी स्किन को भी अगर हमें ग्लो करना है, हमारी स्किन को अगर निखारना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। अब बहनों बात आती है, बहुत सी बहनों का ये सवाल होता है कि हम गर्मियों में कैसा मेकअप करें कि हमारे चेहरे पे पसीना नहीं आए। तो मार्केट में बहनों बहुत सारे प्रोडक्ट पाए जाते हैं जो कि वाटरप्रूफ होते हैं, लेकिन देखिए जब तक आपकी स्किन में नरमी नहीं होगी तब तक कोई भी वाटरप्रूफ आप इस्तेमाल करें वो इतना इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले जब भी हम मेकअप करें, सबसे पहले अच्छे से अपनी स्किन को किसी भी फेस वॉश से या घरेलू कोई भी आप जैसे कि मुल्तानी मिट्टी हुई, इसके अलावा आप टमाटर का जूस है, इसके अलावा आप खीरे का जूस है आदि, इन चीज़ों से अपने फेस को कॉटन से पूरा क्लीन कीजिए। उसके बाद आइस बहनों, बर्फ को क्यूब को किसी भी टॉवल या हैंकी में लेके पूरी स्किन में आपको रब करना है। रब उतनी देर करना है जब तक ना कि आपकी स्किन प्रॉपरली ठंडी हो जाए। जब
आपकी स्किन प्रॉपरली ठंडी हो जाएगी, उसके बाद आपको मेकअप शुरू करना है। मेकअप में विशेषतर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेकअप का जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑयली

0: बेस ना हो, उसका जो बेस हो वो ड्राईनेस हो। अगर आप फाउंडेशन यूज करती हैं तो वो भी आप ड्राई फाउंडेशन यूज कर सकती हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। दूसरी बात, गर्मियों में क्रीम का इस्तेमाल कम किया जाता है, गर्मियों में कॉम्पैक्ट यानी पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है ताकि आपकी स्किन के जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो पाउडर से दब जाए। दूसरी बात, हम जब लिपस्टिक का यूज़ करते हैं तो गर्मियों में आप ऑयल बेस्ड लिपस्टिक ना यूज़ करके मैट लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैट लिपस्टिक से आपकी जो लिप्स हैं वो ड्राइनेस भी नहीं होंगे और दूसरी बात, आपकी लिप्स भी बहुत अच्छे लगेंगे जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ। बहनों, गर्मी आते ही माइंड में एक टेंशन सी हो जाती है कि हमको कहीं शादी में जाना है, हमें क्या करना चाहिए। तो बहनों, गर्मियों में बालों के लिए भी आप कोई अच्छी सी हेयर स्टाइल का चुनाव कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप गर्मियों में बाल खुले रखती हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, तो उससे आपके चेहरे में गर्मियों की जो एक घबराहट, जो थकान, जो परेशानी होती है वो आपके चेहरे से दिखेगी। तो गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बालों का कोई अच्छा सा पोनीटेल, कोई अच्छी सी फंकी स्टाइल में कोई भी जूड़ा वगैरह आप बना सकती हैं। गर्मियों में सबसे ज़्यादा आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी बाहर निकलें तब आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन बहन वो होती है जो कि धूप से आपकी त्वचा की रक्षा करती है, यानी कि सन प्रोटेक्ट। उसको हम सनस्क्रीन SPF 3 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। आप जो भी यूज़ करती हैं उसके बाद जब आप बाहर निकलती हैं तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, आप गॉगल्स का इस्तेमाल करें, आप अपने चेहरे को ढकने के लिए स्कार्फ व हैंकी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं ताकि आप धूप से अपनी स्किन को बचा सको। आप हैंड स्कार्फ भी आते हैं उसको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि आपकी हैंड की या फेस की स्किन काली ना हो। गर्मियों में दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि जब गर्मी ख़त्म हो जाती है तब हमको दिखता है कि हमारी स्किन कितनी टैन हो गई, टैन यानी कि धूप से जल गई। तो बहनों, जितना आप अपनी स्किन को धूप से बचा के चलोगे तो आपकी स्किन बर्न नहीं होगी। अगर आपकी स्किन धूप से बर्न हो भी जाती है तो आप बहनों, दही एक ऐसा एंटीऑक्सी है जिससे आपकी स्किन की टैनिंग हट सकती है। आप दही को डेली में इस्तेमाल खाने में भी कर सकते हैं और लगाने में भी कर सकते हैं। आप दही में चुटकी भर हल्दी, अभी नहीं वो भी आपको मई लास्ट या जुलाई के लास्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। चुटकी भर हल्दी को दही में मिक्स करके आप अपनी पूरी स्किन में रब कीजिए, आप अपने फेस पर रब कीजिए, तो उससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। और बहनों, गर्मी बहुत है, गर्मी से बचाव का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मियों में हमको मेकअप करना है, हमको अपनी स्किन की देखभाल करनी है, उसको निखारना है। धन्यवाद।
1: तो बहनों, अभी आपने आईना क्रम में ये वार्ता सुनी, गर्मियों में निखारें अपनी त्वचा, इस विषय पर जानकारी दे रही थी किशोरी पाठक। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हमें गर्मियों में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी तो हर रोज़ पीना ही चाहिए। और इन्होंने ये भी बताया कि हम अपने बालों को खुला ना छोड़ें, अगर खुला छोड़ें तो उनको कोई स्टाइल दें। और गर्मियों में मेकअप आप कैसे करें, तो बहुत सारी आप बर्फ लेकर के अपनी स्किन पर रब कर सकती हैं और उसके बाद मेकअप करें। तो बहुत ही अच्छी हमारी बहनों को जानकारी मिली। बहनों, अपनों के बीच रहकर भी कभी कभी बहुत अकेला सा लगता है, दिल की बातें कहने को कोई अपना सा नहीं मिलता, खुद से ही बातें कर लेता हूँ, यही अब आदत सी हो गई है, शोर बहुत है इस दुनिया में, खामोशी ही बेहतर लगने लगी है। जी हाँ बहनों, जैसा कि किशोरी पाठक जी ने बताया कि हम अपनी स्किन को कैसे निखार सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि हमारी स्किन सिर्फ गर्मियों में ही हमको परेशान नहीं करती, जो सोशल मीडिया है अगर हम उसको लगातार उसका उपयोग करेंगे तो हमारी स्किन वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। स्क्रीन की चमक में खुद को मत खो देना, रिश्तों की गर्माहट को कभी न भूल जाना। डिजिटल दुनिया ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, मगर ज़िंदगी नहीं है सिर्फ डिजिटल दुनिया के लिए।

जैसा कि इन चंद पंक्तियों से आप सभी समझ ही गई होंगी बहनों कि हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ बहनों, आज का दौर डिजिटल दुनिया का दौर है। मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद से दूर होते जा रहे हैं। सुबह उठते ही मोबाइल और रात को सोने से पहले भी वही स्क्रीन, यही तो है हमारी आदत। और ये आदत इतनी भयावह स्थिति में पहुंच गई है कि हम अब इससे ग्रसित से होने लगे हैं। इसीलिए आज का विषय है डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन से हटें और खुद से मिलें। जी हाँ बहनों, स्क्रीन के चक्कर से थोड़ा बाहर निकलें और ज़रा खुद को देखें। वो बेजान हमारे चेहरे की त्वचा, आंखों के नीचे काले घेरे। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर अपने मन, शरीर और रिश्तों को समय देना। बच्चे तो बहुत ही तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं, उनको भी आप यही सिखाएं, यही बताएं कि स्क्रीन से दूरी बनाकर रखें। जब हम लगातार स्क्रीन देखते रहते हैं तो आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, आंखों में दर्द होता है, तनाव होता है, नींद की कमी और मानसिक थकान जो होती है, वो ऐसी सारी समस्याएं जो होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे हम अपनों के बीच रहकर भी उनसे दूर होने लगते हैं, लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए मोबाइल को थोड़ा सा दूर भी रख देते हैं तो सोचिए ज़रा कितना सुकून मिलता है। ये प्रकृति की जो सुंदरता है, परिवार का प्यार है और अपने मन की शांति महसूस होने लगती है। मोबाइल की दुनिया में इतना न खो जाओ, अपनों की मुस्कान से भी रिश्ता निभाओ। थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकालो, स्क्रीन से हटकर जिंदगी को फिर से अपनाओ।

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820026235 మ్యాచ్ టచ్.

0: अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम लेकर आपके साथ रही खुशबू मिश्रा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई।

0: typically faced names of the states. It is above normal heat of days are expected over parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Gujarat, and Andhra Pradesh, and isolated regions of Maharashtra, Telangana, Himachal Pradesh, and Tamil Nadu.
1: In sports, at the 2026 Asian Under-20 Athletics Championships, stellar results were recorded in multiple track and field events involving Indian athletes. In the women's 100 meters, Neepam won the bronze medal with a timing of 11.62 seconds. She became the first Indian woman in 25 years to win a medal in this event at the championships. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Neepam wins bronze in women's 100 meter at Under-20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanaklata. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
2: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
4: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये

0: सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
1: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध

0: कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता।

0: पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

बजरंगी भाईजान, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, स्वर थे आतिफ असलम के। आइए सुनते हैं अग्निपथ फिल्म का ये गीत, स्वर हैं सोनू निगम के।

अग्निपथ इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। स्वर थे सोनू निगम के। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

क्वीन फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे स्वर थे लाभ जुनेजा, सोनू कक्कर और नेहा के। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं एक और गीत।

आर्टिकल 15 इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। स्वर थे यसीर देसाई और आकांक्षा के। इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब संपन्न होते हैं। अपनी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: शुभवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। मित्रों, आज चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। चौधरी चरण सिंह जी एक भारतीय राजनीतिक किसान नेता, लेखक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक थोड़े समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। चौधरी चरण सिंह जी मुख्य रूप से अपने भूमि और कृषि सुधार पहलों के लिए जाने जाते थे और वो बागपत से सांसद थे। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में वे जनता पार्टी धर्मनिरपेक्ष के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। 1979 से जुलाई 1979 तक थोड़े समय के लिए भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। चौधरी चरण सिंह जी को व्यापक रूप से किसानों का मसीहा माना जाता है, जो किसानों के कल्याण और अधिकारों की वकालत के लिए समर्पित थे। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म मेरठ जिले में हुआ था और उन्होंने 1923 में आगरा कॉलेज से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर 1925 में इतिहास में कला स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 1927 में उन्होंने मेरठ कॉलेज से विधि स्नातक यानी LLB की उपाधि पूरी की। चौधरी चरण सिंह जी ने महात्मा गांधी से प्रेरित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनीति में प्रवेश किया। चौधरी चरण सिंह जी ने ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष में गांधी जी का अनुसरण किया और कई बार जेल गए। 1930 में नमक कानूनों के उल्लंघन के लिए अंग्रेजों ने उन्हें 12 साल के लिए जेल भेज दिया और नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए उन्हें 1 साल के लिए फिर से जेल भेजा गया। अगस्त 1942 में भारत रक्षा नियमों के तहत अंग्रेजों ने उन्हें फिर से जेल भेज दिया और नवंबर 1943 में रिहा कर दिया। सबसे पहले उन्होंने उत्तरी भारत में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अपने से पूर्ववर्ती मुरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री होने वाले दूसरे उप प्रधानमंत्री भी हैं। चौधरी चरण सिंह जी को 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसी विभूति को उनके पुण्यतिथि पे शत शत नमन।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन-स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

0: युवाणी कार्यक्रम में अब ये सुनते हैं छल की आटे दाल का भाव। लेखक हैं रेणु अग्रवाल, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की है।
1: आटे दाल का भाव, आइए सुने रेणु अग्रवाल की लिखी ये झलकी, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की है।

0: अरे सुनू की माँ, कहाँ हो? तूने तो इतना अंधेरा कर रखा है, क्या शोक सा मना रखा है? ओ शीलू की माँ।
1: हाँ हाँ, क्यों शोर मचा रखा है? घर में हूँ, कहीं बाहर नहीं गई।
0: अरे वो तो मैं देख रहा हूँ, पर देख तो।
1: हाँ अब बताओ क्या दिखा रहे हो?
0: अरे कल शीलू को देखने वाले आ रहे हैं, देखो तार आया है। अरे देख सुन, पड़ोसी से सारा सामान ले आना, कोई कमी न रह जाए, नहीं तो नाक कट जाएगी ना।
1: हाँ हाँ, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, आखिर मेरी भी तो लड़की लगती है। घर को इतना सजाऊंगी कि आंखें चकाचौंध हो जाएंगी देखने वाले की।
0: आज तुम ज्यादा अकल की बातें कर रही हो।
1: तो मूर्खता की कब करती हूँ?
0: अरे मैं तो तुम्हारी तारीफ के पुल बांध रहा था, और एक तुम हो कि मेरे सिर पर सवार होने लगी।
2: अरे माँ, ये क्या कर रही हो? सारे घर में इतना सारा सामान कहाँ से आ गया?
1: अरे तू तो मूर्ख है, नहीं जानती अपनी इज्जत के लिए इंसान क्या नहीं करता। मैं भी अगर पड़ोसी से सामान ले आई तो क्या बुरा किया?
2: लेकिन माँ, ये सब दिखावा किस लिए है?
1: मैं तुझे कैसे समझाऊं, तुझे समझाऊं या काम करूं? हे राम, औरत का जन्म किसी को ना दे।
2: अरे माँ क्या कह रही हो, हमारे बिना तो संसार शून्य में हो जाएगा। पता है माँ, सारा चक्र इस स्त्री जाति से ही चल रहा है।
1: देख शीलू, हाय रे, मेरी तो सांस भी उखड़ रही है। इन लड़के वालों के लिए कितना कुछ करना पड़ता है।
2: माँ आप समझी, आज फिर एक महानुभाव आ रहे हैं, पर माँ दहेज तो नहीं मांग रहे। सुन लेना, अगर दहेज में अगर फूटी कौड़ी भी मांगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। पता है माँ, लड़के वाले अगर शुरू से मांगते हैं तो अंत तक उनका मुंह ये लाव वो लाव खुला ही रहता है। उनकी बला से चाहे लड़की के माँ बाप बिके या बहन भाई, उन्हें क्या परवाह।
1: बेटी, हमारा फर्ज जो है वो हम पूरा करेंगे, चाहे कैसे भी करें।
2: दुनिया वाले अपना अपना फर्ज निभाकर उद्धार पा जाते हैं, पर बीतती जिस पर है उस पर तो।
0: अरे देखो कौन है।
1: होगी कोई शीलू की सहेली, हर वक्त महफिल ही जमी रहती है। मना कर देना जी, आज लड़के वाले आ रहे हैं, मैं किस किस को संभालूंगी? उधर लड़के वालों के नक्शे, इधर लड़कियों की हंसी मजाक।
0: अरे कौन? अरे आप दीनदयाल जी, आइए आइए। नमस्कार नमस्कार।
3: नमस्कार नमस्कार।
0: मैं अभी अभी आपको लेने स्टेशन ही जा रहा था।
3: अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो आ ही रहे थे भाई, फिर आप। हाँ हाँ, तो हमारी शीलू बेटी कहाँ है?
0: अरे अभी आप आए हैं, शीलू भी आएगी।
3: नहीं भाई देखो, पहले शीलू बाद में कुछ काम।
0: देखिए आप इतनी दूर से आए हैं, पहले चाय चलेगी।
3: वैसे चाय चलेगी तो नहीं, लेकिन पी अवश्य लूंगा। आओ बेटी बैठो, आओ बैठो
4: जी।
3: तुम्हारा क्या नाम है बेटा?
4: जी जी शीलू।
3: बहुत अच्छा नाम है, कहाँ तक पढ़ी हो?
4: जी एमए ज्योग्राफी में।
3: अच्छा, कितने अंक प्राप्त किए तुमने?
4: जी 65%।
3: वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। घर का काम जानती है?
4: जी हाँ कर ही लेती हूँ।
5: आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बताएंगी?
4: जी हाँ पूछे।
5: तो बताइए 2+2-1 = 3 या 4?
3: हैं

0: अरे ये क्या पूछा तुमने?
1: जी, 2 + 2 - 1 = 3।
2: बहुत अच्छा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी।
3: लाला जी, आपको शीलू कैसी लगी?
0: भाई महेश जी, मुझे लड़की तो बहुत अच्छी लगी, पर
3: क्या?
0: आपसे क्या कहूँ, कुछ रुपए के विषय में बात करनी थी। आप कल घर आइएगा, आपकी मैं प्रतीक्षा करूंगा।
3: बहुत अच्छा। अरे ओ शीलू की माँ!
4: क्या है जी?
3: सुनती हो?
4: हाँ हाँ, सुनाओ भी।
3: वो दहेज मांग रही हैं, पर हमारे पास इतना दहेज नहीं है, और शादी भी करनी है। और दहेज भी कहीं से कहीं जुटाना ही होगा, पर बताओ कहाँ से आएगा इतना दहेज?
4: अजी, तो वो कुछ जवाब भी दे गए होंगे या नहीं?
3: अरे कल बुलाया है।
4: अजी कल क्यों बताएंगे, आज साफ साफ क्यों नहीं बता के गए?
3: अरे तुम औरतों की अकल छोटी में रहती है, भाई सोच समझ कर ही तो जवाब देंगे। ये शादी है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है, जो बार बार रचा लिया जाए, ये तो जीवन भर का चुनाव है।
4: अरे अब देखो ना, कैसा समय आ गया है, लड़का खुद देखने चला आ रहा है। अजी पहले कहीं हमने तुम्हें देखा था?
3: अरे छोड़ो इन बातों को, पहले हम इतना हद दृष्टि से आगे नहीं थे। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है शीलू की माँ, बहुत आगे बढ़ गई है, हमारे विचार अब स्वतंत्र हो गए हैं।
4: और हाँ जी, वो शीलू से क्या पूछा था लड़के ने, 2/2 × 1?
3: अरे वो कुछ नहीं, वो तो परिवार नियोजन के विषय में पूछ रहा था।
4: हाय रे, शादी हुई नहीं कि बच्चों का हिसाब किताब पहले होने लगा?
3: हाँ, हम जैसे नहीं कि चार चार लड़कियां और चार चार लड़के की जिम्मेदारी में हम पिसते चले जाएं।
4: हाँ, तो हम कोई नंगे भूखे तो नहीं है जो सारी जिंदगी यही सोचते रहे?
3: देखो रमा, समझने की कोशिश करो, आज देश उस दौर से गुजर रहा है, किसी न किसी दिन स्थिति आ जाएगी जब एक विस्फोट हो जाएगा और उसका परिणाम हम सबको भुगतना होगा।
4: विस्फोट? कैसा होगा विस्फोट?
3: हाँ विस्फोट, उसमें सारी जनता हर दृष्टिकोण से तरसेगी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा।
4: तो अब ये बताओ, शादी में लेंगे क्या वो?
5: अरे आप आ गए?
0: हाँ भाई आ ही गए।
5: अजी लड़की कैसी लगी?
0: अरे तसल्ली तो लो भाई, लड़की तो बहुत खूबसूरत थी। चाल देखो, रंग देखो, रूप देखो, गुण देखो, हर चीज में लाजवाब थी। मगर
5: मगर क्या?
0: भाई रुपए की बात नहीं चलाई।
5: रुपया छोड़ो, शादी कर दो, देखो रुपए के चक्कर में लड़की भी हाथ से ना निकल जाए।
0: अरे भाई कल वो जवाब देने आएंगे, इतनी जल्दी भी क्या है?
5: इतना रुपया है फिर भी अपना हाथ फैलाना नहीं छोड़ोगे?
0: अरे ये तो मेरे खून पसीने की कमाई है।
5: तो अभी शीलू के पिता की नहीं होगी? कम से कम शादी पर तो यह दहेज के नाम पर रुपया मत लो, वैसे ही बहुत रिश्वत लेते हो। तुम्हारे आगे भी तो लड़कियां हैं।
0: आओ बेटा श्याम, आओ।
6: पापा मुझे लड़की पसंद है।
0: अरे बेटा पहले रुपए की तो बात हो जाने दे।
6: लेकिन पापा अब मैं और लड़की देखने नहीं जाऊंगा, बस आपका पहला सवाल रुपया होता है, लड़की नहीं।
0: अरे तुम दोनों को क्या हो गया है, तुम दोनों के दोनों मेरे खून पिए जा रहे हो।
6: खून नहीं पापा, आप सोचते क्यों नहीं, लड़की मिल रही है पढ़ी लिखी सर्वगुण संपन्न, बस समय के परिवर्तन से आप इतना रुपया वसूल करना चाहते हैं, ये कहां का न्याय है?
0: अरे तू क्यों वकालत किया जा रहा है, ये सब और को सुनाना, समझे? मैं तो पहले रुपया और बाद में लड़की, समझे?
6: पापा आप
0: दुनिया ले रही है, मैं ही कोई अनोखा हूं क्या? दुनिया ले रही है समझे, मैं ही ले लूंगा तो क्या?
6: पापा एक और 11 होते हैं, अगर आज आप नहीं लेंगे तो धीरे धीरे वो सीमा आ जाएगी जब दहेज नाम की समस्या हल हो जाएगी और अनेक भोली भाली लड़कियां खुशी से जीवन यापन करेंगी।
0: हाँ हाँ देखा जाएगा।
6: पापा आज हम पढ़े लिखे आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक और कैसे इस समस्या के समाधान की ओर और लोगों को आकर्षित करेंगे?
0: हाँ हाँ सुन लिया, बहुत सुन लिया।
7: दीनदयाल जी, जो दीनदयाल जी
0: आया भाई आया। अरे अरे आप महेश जी, आइए आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था।
3: हाँ कुछ देर से पहुंचा हूं, क्षमा चाहता हूँ।
0: बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, वो तो सब चल जाता है। तो बताइएगा आप रुपया कितना देंगे?
3: दीनदयाल जी हम लड़की वाले हैं, हम क्या दे सकते हैं, बस यही

0: 40 हजार।
1: 40 हजार? सिर्फ ये 40 हजार? अरे शिव शिव शिव शिव शिव, यह तो बहुत कम है। जरा देखो तो, मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी वाला है।
0: देखिए, मैं भी लड़की वाला हूँ, मेरे चार चार लड़कियां हैं और मेरे ऊपर उनकी जिम्मेदारी है, मैं ज्यादा कैसे दे सकता हूँ।
1: तो इसे मुझे क्या, आपने परिवार नियोजन क्यों नहीं किया?
0: देखिए लाला जी,

0: और शादी अलग।
1: दीनदयाल जी मेरे ऊपर रहम खाइए।
0: कुछ नहीं, आप कल जवाब दे दें, मुझे अभी और लड़की वालों को जवाब देना है, समझे? आप जा सकते हैं।
1: मैं कैसे दे पाऊंगा इतने?
0: मैं इसको कुछ नहीं जानता, कैसे दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे ये आपके सोचने की बात है।

0: गजब हो गया, मैं तो लुट गया।
1: अजी क्या हो गया, कैसे लुट गए?
0: अरे शीलू की माँ, वो तो 80,000 नगद मांग रही है, 80,000, और शादी, दहेज, हाय
2: हाय राम, बस इसी दिन लड़की भारी लगती है। अब बताओ 80,000 इसी की शादी में लगा देंगे तो फिर क्या कटोरा लेकर भीख मांगेंगे?
0: मैं बहुत गिड़गिड़ाया उनके सामने, पर एक नहीं सुनी उन्होंने मेरी।
2: लेकिन शादी तो करनी है, आप तो, ऐसा क्यों नहीं करते?
0: तो मेरे पास कहाँ से लाऊं इतने रुपए?
2: ऐसा क्यों नहीं करते, मेरे गहने बेच दीजिए।
0: शीलू की माँ, नहीं ठीक है, मैं इसकी शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं गहने बेच दूंगा, पर फिर क्या होगा?
2: माँ बाप का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ क्यों ना हो।
3: अरे आप महेश जी, आइए आइए आइए, बैठिए।
0: हाँ दीनदयाल जी, मुझे आपका रिश्ता मंजूर है। ये लीजिए, ये लीजिए आपके रुपए, गिन लीजिए, 80,000 हैं, 80,000।
3: मुझे आपसे यही उम्मीद थी लाला जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप रुपए का बंदोबस्त पूरा करेंगे, मुझे आपसे यही उम्मीद थी।
4: दीनानाथ जी आप हैं क्या?
3: जी हाँ, मुझे ही कहते हैं दीनानाथ।
4: जी मुझे भी आपको रंगे हाथों पकड़ने की उम्मीद थी। चलिए आपका वारंट है।
3: जी
4: जी हाँ।
3: आप और मेरे घर?
4: जी हाँ। ये रुपए कैसे आपके हाथ में?
3: रुपए रुपए, हाँ हाँ, ये रुपए कैसे? बस जी आए हैं, है रुपए।
4: आप अपना लड़का बेच रहे हैं, ये शादी कर रहे हैं, या ये लेन देन दहेज के नाम पर देख रहे हैं आप, इतना विरोध हो रहा है?
3: लेकिन लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
4: हाँ हाँ, अब क्यों आएगा, तुम्हारी बुद्धि पर धन का पर्दा जो पड़ गया। दीवान जी पहला रुपये हथ करी?
3: नहीं हथ करी नहीं,
4: कुछ नहीं।
5: अरे इधर चलो, आप करीब बैठो।
4: चलिए आप मेरे साथ चलिए।
6: पापा मैंने तो पहले ही कहा था मुझे लड़की चाहिए पढ़ी लिखी सुंदर, लेकिन आप हाय रुपया, पता चला आप इज्जत पानी में मिल जाएगी, सारे शहर में बदनामी होगी।
3: मैं 80,000 रुपया लौटा दूंगा, मैं लौटा दूंगा 80,000 रुपया।
4: आप क्या, वो तो अदालत ही लौटा देगी।
1: कहाँ ले जा रहे हो? अरे इन्होंने कछु ना किया, इन्होंने कछु, मैंने बहुत देरी समझाई पर कछु ना किया। हाय राम दरोगा जी, इन्हें छोड़ दो।
4: कुछ नहीं कुछ नहीं, अब चलो अदालत में, तब मालूम पड़ेगा आटे दाल का भाव।
1: अरे
3: मैंने बहुत गलती की, मैंने बहुत गलती पर था, मुझे मेरी पत्नी ने तथा बेटी ने समझाया था, पर मैं अंधेरे में था, शायद चार होता, देखने को नहीं मिलता, तो ये दिन देखने को नहीं मिलता बेटा, मुझे बचाने बेटा,
6: पापा,
3: बस बेटा, मुझे और शर्मिंदा मत कर, मैं खाली सीलू बेटी को ही ले आऊंगा और कुछ भी नहीं लूंगा, रुपया पैसा दहेज के नाम पर कुछ नहीं लूंगा दरोगा जी, हथकड़ियां पहना कर मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी, मुझे बचाओ, मेरी लाश तुम्हारे
4: रुपया ले जाते हो, धूल में इज्जत नहीं मिली थी, अब आप चलिए मेरे साथ कोतवाली।
5: चलो मेरे साथ।
7: अभी तक आप सुन रहे थे रेनू अग्रवाल की लिखी झलकी आटे दाल का भाव, इसमें

0: अगलिया कृष्ण जीवन तैलंग, रामसरीन, विनोद शर्मा, साधना भार्गव और मधु भटनागर ने इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे आर के त्रिपाठी।
1: साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस है। हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। 29 मई 1948 को यूएन का पहला शांति मिशन शुरू हुआ था। यूएनटीएसओ यानी यूनाइटेड नेशन टू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, ये फिलिस्तीन में युद्ध विराम की निगरानी के लिए था। इस दिन की याद में 2002 में यूएन महासभा ने 29 मई को शांति सैनिक दिवस घोषित किया। ये दिवस उन 4,400 से ज़्यादा शांति सैनिकों को याद करना है जिन्होंने 1948 से अब तक सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। 2025 में ही 32 शांति सैनिक शहीद हुए। हर साल दुनिया भर में तैनात 68,000 से ज़्यादा सैनिक, पुलिस और नागरिक कर्मियों के साहस को सलाम करना है। जागरूकता के लिए शांति सैनिक क्या करते हैं, ये हम सबको जरूर जानना चाहिए। यूएन पीसकीपर्स को ब्लू हेलमेट भी कहते हैं। ये हथियार चलाने नहीं बल्कि शांति बनाए रखने जाते हैं के लिए रखे जाते हैं। इनका विशेष रूप से काम है कि युद्ध विराम की निगरानी करना, साथ ही आम नागरिकों की सुरक्षा करना, चुनाव कराने में मदद करना, विशेष रूप से मानवाधिकार का उल्लंघन को रोकना भी इसी पीसकीपर्स का काम है, साथ ही निरस्त्रीकरण में मदद करना। 2026 की हर साल थीम रहती है। इस वर्ष की थीम है पीस बिगिंस विद मी, 75 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस, यानी शांति मुझसे शुरू होती है, 75 साल से अधिक की सेवा और बलिदान। भारत यूएन शांति मिशन में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में से एक है। अब तक जो सैनिक हमारे यहाँ से भेजे गए हैं उसमें से लगभग 3 लाख से ज़्यादा 1948 से अब तक भेजे जा चुके हैं और वर्तमान में लगभग 5,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं अलग अलग मिशन पर, और साथ ही 180 से ज़्यादा भारतीय सैनिक शहीद हो चुके हैं। 2007 में पहली महिला पुलिस लाइब्रेरिया भेजी गई थी। कांगो मिशन में परमवीर चक्र पाने वाले अकेले यूएन शांति सैनिक हैं कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और जिन्हें भारत में सेना का मुख्यालय नेशनल डिफेंस कॉलेज में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आज के दिन रखा जाता है, जहां सभी शहीद सैनिकों को इनको श्रद्धांजलि दी जाती है और पूरी दुनिया में ब्लू हेलमेट पहनकर परेड और फोटो प्रदर्शनी के द्वारा इनको श्रद्धांजलि दी जाती है। शांति सैनिक नायक नहीं बनना चाहते हैं, वो बस ये चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो और लोग घर लौट सकें और अपने यहाँ शांति से रह सकें।

सुजैन जॉली मुखर्जी और बाली ब्रह्म भट्ट के गाए इस गीत के साथ ही आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी श्रोता युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे FM 102.2 MHz पर, यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6 बजने हुए, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाए।

0: जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, वो रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और अब प्रस्तुत है हमारे यहां से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ देर बाद संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा, जिसमें आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर और पॉली हाउस फार्मिंग पर चर्चा करेंगे दिलीप।

Yeah, dog. वार्ता होगी मई जून माह की खड़ी फसल एवं धान की नर्सरी में कीट एवं रोग प्रबंधन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुशांत कुमार। इसके अलावा वो भी आधारित कार्यक्रम होगा, तप रहे धरती आसमान, पशुओं पर क्या होगा दुष्प्रभाव। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ब्रजेश यादव और आपसे बातचीत करेंगे दिलीप यादव। इसके अलावा कुछ लोकगीत होंगे, साथ ही मौसम का हाल और बाजार भाव बताया जाएगा। समय रहेगा संध्या 6:15।

फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन का समय रहेगा आज सायं 6:45। संध्या 7:05 पर भी साहित्य कार्यक्रम में आशुतोष सुनेंगे ब्रज नवकथा संबंध। वार्ताकार होंगे संतोष शर्मा।

देशकान का समय रहेगा अब से कुछ देर बाद संध्या 6:10 और रात 8:20। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी लखनऊ से ले करेंगे संध्या 7:20 पर।

श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा शाम सुहानी संध्या 7:31 पर और नवरंग रात 9:15 पर। फिल्म संगीत श्रोता सुनेंगे रात 8 बजे। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर।

आज रात 10 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम होगा, जिसमें श्रोता सुनेंगे भजन केएल जुनेजा के और जाउद्दीन की गाई चंद गजलें सुन सकेंगे। समय रहेगा रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आज श्रोता सुनेंगे उस्ताद अमीर खान साहब का ख्याल गायन। हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात 8:45 और रात 11 बजे। अंग्रेजी समाचार होंगे रात 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। हमारी दूसरी सभा का समापन होगा रात 11:10 पर। यह था आज का कार्यक्रम विवरण। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति परक रचना।

रामधारी सिंह दिनकर की शब्द रचना भी आपने सुनी सभ्य स्वरों में FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और अब श्रोता सुनेंगे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे दिलीप यादव।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सब किसान भैया बहनों को दिलीप यादव की राम राम। किसान भैया, आज है 29 मई। आज को दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानन के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के स्मृति में विशेष महत्व को है, क्योंकि आज ही के दिन उनको देहावशांत भयो। तो देखो भैया, वो किसानन के मसीहा तो हते, लेकिन किसानन को बिन्ने कहाँ कहाँ काम करे उनकी जानकारी भी आप सबको होनी चाहिए। चौधरी साहब ने जीवन भर किसान और मजदूरन की लड़ाई लड़ी, उनके बहुत से अधिकार दिलवाए और यही लिया उनको सरकार ने तो सम्मान कियो ही कियो। हर किसान भैया के दिल में उनको जो सम्मान है, जो आदर है, वो अविस्मरणीय है। विदेश के पांचवें प्रधानमंत्री 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहे। भूमि सुधारण की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक भूमि सुधारण को काम इनके द्वारा 1939 को विधेयक के रूप में लायके किया गया। भारत रत्न इनके अतुलनीय योगदान के चलते मरणोपरांत प्रदान किया गया। किसान घाट दिल्ली में उनकी समाधि है। और यह के अलावा 23 दिसंबर को चौधरी साहब के जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में समूचे देश में मनाया जाए, और देश में जो किसान भैया प्रगतिशील किसान के रूप में हुए उन्हें जिला मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय और राष्ट्रीय मुख्यालय पे सम्मानित हो किया जाए है। तो निश्चित रूप से किसान भैया, देखो किसान की बात बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन किसान के काजे काम करवे बारे चौधरी साहब की आज पुण्यतिथि है, तो निश्चित रूप से सत सत नमन वंदन। अब हम चर्चा कर रहे हैं पाली हाउस फार्मिंग की। तो किसान भैया देखो, हमारा जो इलाकों है यहाँ पे पाली हाउस अभी बहुत कम है, लेकिन पहाड़ी जो इलाके हैं जहाँ ज़मीन कम है, जहाँ पत्थर ही पत्थर ज़्यादा हैं, वहाँ पे पाली हाउस, ग्रीन हाउस, ये जो तकनीकी है यह को बहुतायत में प्रयोग किसान भैया करवे लगे हैं। और यह को फ़ायदा ये है कि काऊ भी मौसम में कोई सी भी सब्जी उगाई जा सके। तो यह तकनीकी के कहाँ का लाभ है ये जानने की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ देखो, जैसे हम राजस्थान से सटे हुए हैं, और राजस्थान से सटे हुए के कारण पॉली हाउस में जो हवा की गति है वो कई बार दिक्कत पैदा करे। भरतपुर, राजस्थान से लेकर जयपुर तक के कई इलाके में पॉली हाउस बने और बनने के बाद बिगड़ गए। तो ये पारदर्शी जो पॉलीथीन है वहाँ से एक तरीका के खेत को कवर किया जाए, अपने जगह जगह देखे होंगे बहुत सारी जगह पे, और वह मैं फिर गर्मी को निकालवे को, तापमान नियंत्रित करवे को एक पूरा सिस्टम बनाया जाए, जाके माध्यम से अगर आपको गर्मी में जाड़े की फसल लगानी है, जाड़े में गर्मी की फसल लगानी है, आप सब्जी मंडी में देखो हो ना कि आप साल भर गाजर मिल रही हैं, मूली की तो चलो वैज्ञानिक ने साल भर की वैरायटी बना दी है, गोभी की साल भर की वैरायटी वैज्ञानिक ने बना दी है, लेकिन बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो अब जैसे खीरा ही है गर्मी के समय पर हो गए, सर्दी में खीरा की फसल अगर हमें लेनी है तो हम कैसे लें, और बहुत सी सब्जी हैं जिनको प्रतिकूल यानी कि एक बनावटी मौसम या पॉली हाउस में दे के उनको हम उगा सकें और उनकी अच्छी कीमत पा सकें। विशेष रूप से पॉली हाउस को प्रयोग जो विदेशी फूल हैं, पुष्प हैं, जिनकी कीमत अच्छी मिले है, पंजाब के जो जागरूक किसान हैं, हरियाणा के जो जागरूक किसान हैं, वो इनको प्रयोग अच्छे जो पुष्प हैं, कीमती जो पुष्प हैं उनके काजे करें, केवल खीरा और ये जो सामान्य फसल हैं इनके काजे पॉली हाउस लगावो या पॉली हाउस को प्रयोग करवो, उतना लाभकारी ना है जितनों को व्यावसायिक खेती के रूप में ऐसी फसलन को लगावे के काजे जिनसे अच्छी आमदनी हो। और ये ही महत्वपूर्ण विषय है। और यह पॉली हाउस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देवे के काजे सरकार ने हूँ अनेक तरह की सब्सिडी यानी छूट की योजना संचालित करी है। तो मथुरा की हम बात करें तो मथुरा चूँकि राजस्थान से सटो है और हवा की जो रफ्तार है बहुत तेज़ आंधी यहाँ पे आमे हैं, तो यहाँ इनके एक ही आंधी में उड़वे, फटवे या बिगड़वे की संभावना बनी रहे। तो ऐसे अगर हमारे किसान भैया पॉली हाउस लगाना चाहें तो जवाहर बाग में उद्यान विभाग को दफ्तर है, छोटे स्तर पर प्रयोग कर सकें, कम लागत के पॉली हाउस बना सकें और वहाँ से विस्तृत जानकारी भी ले सकें कितनी सब्सिडी यहाँ पे है, कौन से समय में लगेगा, कहाँ डिज़ाइन है और डिज़ाइन तेज़ रफ्तार

जो हवा है, आंधी है, उनको झेलने की स्थिति उनकी रहे के ना रहे, तो ये नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थिति में कायू भी समय पर कोई भी फसल लगावे की जो तकनीकी है, या कि पाली हाउस तकनीकी के रूप में या कुछ जानो पहचान हो जाए। तो किसान भैया, ये हमारी है गई पाली हाउस पे चर्चा। अब देखो, मौसम ने ऐसी करवट ली है कि अब लगातार मोबाइल इन पर किसान भैया के रेड अलर्ट आ रहे हैं, आंधी, तूफान, बरसात। तो किसान भैया बड़े बेचैन हैं कि ये ऐसी कौन सी कैसी स्थिति परिस्थिति है कि एकदम 48 डिग्री तक तापमान, फिर एकदम से आंधी, फिर एकदम से तूफान और बरसात। तो खेती बाड़ी की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग भी गड़बड़ भई है। तो हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में एक प्यारा सो लोकगीत, या को विषय भी यही है, नैनन की तपन बुझाओ श्याम।

0: महेश दत्त चतुर्वेदी के स्वर में आप सबने सुनो ये लोकगीत, जाके बोल हे नैनन की तपन बुझाओ श्याम। किसान भैया, मई जून को महीना है और यह समय पे बहुत सी फसल भी खड़ी है और आगे धान की तैयारी हमारे किसान भैया को करनी है। तो हम सुनवा रहे हैं आपको एक वार्ता। वार्ता को विषय है मई जून माह की खड़ी फसल एवं धान की नर्सरी में कीट एवं रोग प्रबंधन। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुशांत कुमार।
1: किसान भाइयों, खेती में थोड़ी सी सावधानी और समय पर पहचान से आप अपनी फसल को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं, क्योंकि याद रखें, समय पर किया गया प्रबंधन ही अधिक उत्पादन की कुंजी है। जैसा आप सभी जानते हैं कि मई के महीने में तापमान अधिक रहता है तथा

आर्द्रता में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिससे कि बहुत सारे कीट एवं फफूंद जनित रोग का प्रकोप अधिक तेजी से बढ़ता है। ऐसे में नियमित निगरानी बहुत आवश्यक हो जाती है। अगर बात करें इस समय की प्रमुख फसलों के, तो सबसे पहले आती है मूंग की फसल। इसमें थ्रिप्स या झुलसा कीट का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। यह कीट गर्म एवं शुष्क मौसम में तेजी से बढ़ता है। यह पत्तियों का रस चूसता है, जिसके कारण उसका रंग चांदी के जैसा दिखाई देने लगता है, जिसके फलस्वरूप पत्तियां मुड़ जाती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई 8 से 10 पीले चिपचिपे प्रपंच प्रति एकड़ लगा सकते हैं। साथ ही एजाडीरेक्टिन 1500 ppm की 2 से 3 mm मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अधिक प्रकोप होने पर थियामेथोक्सोम या इमिडाक्लोपिड की 0.3 mm मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से प्रयोग करें। इसके बाद इस फसल में सफेद मक्खी का भी प्रकोप हमें अधिक देखने को मिलता है, जो अधिक तापमान और खेत में मौजूद खर पतवार के कारण तेजी से बढ़ती है। यह पत्तियों का रस चूसती है, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और साथ ही यह पीला मोजेक वायरस जनित रोग भी फैलाती है। इसके नियंत्रण के लिए पीले चिपचिपे प्रपंच लगाएं तथा नीम तेल की 5 mm प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें। अधिक प्रकोप होने पर एस्टामिप्रिड की 0.25 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसिड और हरा तेला भी एक महत्वपूर्ण कीट है, जिसके प्रकोप अधिक नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग से बढ़ता है। इसके कारण पत्तियां किनारों से पीली होकर मुड़ जाती हैं, जिसे हॉपर वर्म कहा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें तथा आवश्यकता होने पर ही थियामेथोक्सोम की 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मात्रा को घोलकर छिड़काव करें। रोगों में मूंग की फसल में पीला मोजेक एक प्रमुख वायरस जनित रोग है, जो सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियों पर पीले हरे धब्बे दिखाई देते हैं और पौधा कमजोर हो जाता है। इसके प्रबंधन के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए तथा सफेद मक्खी का नियंत्रण करना अति आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा चूर्णी फफूंद रोग गर्म दिन और ठंडी रातों के कारण होता है, जिसमें पत्तियों पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पत्ती धब्बा रोग अधिक नमी के कारण होता है, जिससे पत्तियों पर भूरे धब्बे बनते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करें। भाइयों एवं बहनों, गर्मी एवं वर्षा के मौसम में सब्जियों, विशेषकर कुकुरबिट्स फसलें जैसे कि लौकी, करेला, तुरई, खीरा एवं कद्दू में भी अनेक कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। साथ ही नर्सरी अवस्था में थोड़ी सी लापरवाही पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए समय समय पर निगरानी एवं उचित प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। कुकुरबिट फसलों में फल मक्खी एक प्रमुख कीट है। यह फलों में अंडे देकर उन्हें अंदर से सड़ा देती है, जिस वजह से फल टेढ़े मेढ़े होकर गिरने लगते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई 8 से 10 मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप प्रति एकड़ लगा सकते हैं और साथ ही प्रभावित फसलों को एकत्रित करके नष्ट कर दें तथा नीम आधारित कीटनाशी जैसे एजाडीरेक्टिन की 2 से 3 mm मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। अधिक प्रकोप होने पर स्पाइनोसेट की 0.3 mm मात्रा को प्रति लीटर पानी में लेकर छिड़काव कर सकते हैं। इन फसलों में हमें किसान भाइयों माहू एवं सफेद मक्खी का प्रकोप भी देखने को मिलता है। पत्तियों का रस चूसकर पौधे को कमजोर बनाते हैं तथा मोजेक जैसे वायरस रोग फैलाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए पीले चिपचिपे ट्रैप लगा सकते हैं तथा खेत को खरपतवार मुक्त रख सकते हैं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इमिडाक्लोपिड की 0.3 mm मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव भी कर सकते हैं। इस समय की सब्जियों में अगर बात करें तो चूर्णी फफूंदी एवं डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। चूर्णी फफूंदी में पत्तियों पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है, जबकि डाउनी मिल्ड्यू में पत्तियों के नीचे धूसर फफूंद बनती है। इसके नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक की 2 से 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के साथ मेटल स्टॉक प्लस मेनकोजेब की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें नर्सरी की, तो नर्सरी प्रबंधन में कुछ विशेष सावधानियां भी अपनाने से हमें इन क्षतियों से बचाया जा सकता है। जैसे कि बीज बुवाई से पहले बीजोपचार अवश्य करें। इसके लिए कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज अथवा ट्राइकोडर्मा की 5 से 10 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें। इसके अतिरिक्त किसान भाई नर्सरी में जल निकास की उचित व्यवस्था रखें, क्योंकि अधिक नमी से डैम्पिंग ऑफ

काश व शीत ब्लाइट जैसे रोग फैल सकते हैं। बहुत घनी बुवाई ना करें तथा समय समय पर पौधों का निरीक्षण करते रहें, और अगर रोग ग्रस्त पौधा मिलता है तो उसे तुरंत हटाकर नष्ट करें। इसी क्रम में अब बात करते हैं कपास की फसल पर। तो इस समय कपास की बुवाई एवं प्रारंभिक वृद्धि अवस्था होती है, इसके लिए शुरुआत से ही सही प्रबंधन अत्यधिक आवश्यक है। कपास में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप अधिक तापमान से तेजी से बढ़ता है, यह पत्तियों का रस चूसकर उन्हें कमज़ोर करती है, साथ ही पत्ती कुंचन रोग भी फैलाती है। इसके नियंत्रण के लिए 8 से 10 पीले चिपचिपे प्रपंच प्रति एकड़ लगाएं तथा नीम आधारित विभिन्न प्रकार के जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें। अधिक प्रकोप होने पर इमिडाक्लोप्रिड या फिर एसिटामेप्रिड की 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जैसे थ्रिप्स और माहू भी कपास में नुकसान पहुंचाते हैं, इनके कारण पत्तियां मुड़ जाती हैं और पीली हो जाती हैं, जिसके साथ ही पौधे की वृद्धि भी रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए संतुलित उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार थियामिथोक्सम या स्पाइनोसेट का बताई गई मात्रा के अनुसार प्रयोग करें। रोगों में पत्ती कुंचन रोग तथा जड़ सड़न प्रमुख है। कपास में पत्ती कुंचन रोग वायरस जनित होता है, जबकि जड़ सड़न अधिक नमी एवं जल भराव के कारण होता है। इसके नियंत्रण के लिए जल निकास की उचित व्यवस्था रखें तथा कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के साथ ड्रेंच करें। अंत में आगामी माह में शुरू होने वाले धान की नर्सरी की बात करते हैं। भाइयों बहनों, धान की नर्सरी एवं स्वस्थ फसल के लिए नर्सरी प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नर्सरी ही अच्छी उपज की नींव होती है। यदि नर्सरी अवस्था में उचित देखभाल न की जाए तो कीट रोग एवं कमजोर पौधों के कारण मुख्य खेत की फसल प्रभावित हो सकती है। इसलिए धान की नर्सरी में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अपनाना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले नर्सरी के लिए ऊंची एवं समतल भूमि का चयन करें, जहां जल निकास की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि अधिक नमी से फफूंदी जनित रोग तेजी से फैलते हैं। नर्सरी की मिट्टी भुरभुरी एवं कार्बनिक पदार्थों से युक्त होनी चाहिए, जिससे कि बीजों का अंकुरण अच्छे से हो सके। बीज बुवाई से पहले बीजोपचार अवश्य करें। इसके लिए कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर अथवा ट्राइकोडर्मा की 5 से 10 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें। इससे बीज एवं मिट्टी जनित रोगों का प्रकोप कम होता है तथा अंकुरण बेहतर होता है। नर्सरी में अधिक घनी बुवाई नहीं करनी चाहिए। अत्यधिक घनत्व होने पर पौधों में वायु संचार कम हो जाता है, जिस कारण रोगों का प्रकोप बढ़ता है और पौधे कमजोर हो जाते हैं। संतुलित मात्रा में बीज का प्रयोग करने तथा कतारों में बुवाई करने से पौधों में वृद्धि अच्छी होती है, और साथ ही पौधों की निगरानी एवं प्रबंधन आसान हो जाता है। जल प्रबंधन भी धान की नर्सरी में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अंकुरण के समय हल्की नमी जरूर बनाए रखें, लेकिन अत्यधिक जल भराव से बचें। अत्यधिक नमी के कारण धान की नर्सरी में पत्ती लपेटक, केस वर्म तथा फफूंदी जनित रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। आवश्यकता अनुसार पानी जरूर दें तथा अतिरिक्त पानी को खेत से तुरंत निकाल दें। धान की नर्सरी में पत्ती लपेटक एवं केशवर्म प्रमुख कीट हैं। ये पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाते हैं, जिससे कि पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इसके नियंत्रण हेतु खेत में जल स्तर नियंत्रित रखें तथा आवश्यकता अनुसार क्लोरेंट्रानिलीप्रोल की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रोगों में ब्लास्ट एवं शीत ब्लाइट की समस्या हमें नर्सरी में देखने को मिलती है। ब्लास्ट रोग की पहचान पत्तियों पर हीरे के आकार के धब्बे देखकर की जा सकती है, जबकि शीत ब्लाइट में पत्तियों एवं तनों पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। ये रोग अधिक नमी एवं घनी बुवाई के कारण तेजी से फैलते हैं। इनके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी अथवा ट्राइसाइक्लाजोल की 0.6 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण भी आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार कीटों एवं रोगों के आश्रय स्थल बनते हैं तथा पौधे से पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा करते हैं। समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और नर्सरी को साफ रखें। साथ ही ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अधिक नाइट्रोजन के प्रयोग से पौधे कोमल हो जाते हैं और कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है।
इसलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास वाली उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें। अंत में किसान भाइयों से निवेदन है कि वह फसल का नियमित निरीक्षण करते रहें।

0: संतुलित उर्वरकों का ही प्रयोग करें, खरपतवार नियंत्रण रखें तथा दवाइयों का बदल बदल कर उपयोग करें ताकि कीटों में प्रतिरोध विकसित न हो। साथ ही कीटनाशकों का प्रयोग करते समय अनुशंसित मात्रा का ही उपयोग करें और सुरक्षा उपायों का पालन करें। याद रखें, समय पर किया गया प्रबंधन ही अधिक उत्पादन और बेहतर आय की कुंजी है। धन्यवाद।
1: तो किशन भैया, मई जून माह की खड़ी फसल एवं धान की नर्सरी में कीट रोग प्रबंधन विषय पर जानकारी दे रहे डॉक्टर सुशांत कुमार, चूंकि गर्मी बहुत है और हम आपको एक ओबी आधारित जानकारी दिलवा रहे हैं, तप रहे धरती आसमान, पशुओं पर क्या होगा दुष्प्रभाव, जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ब्रजेश यादव। धरती और आसमान दोनों बुरी तरह से तप रहे हैं और इस तपन से पशु पक्षी वनस्पति सब झुलस रहे हैं। हमारे साथ हैं वेटनरी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश यादव जी। आपने तापमान के परिवर्तन और उसके प्रभाव दुष्प्रभावों पर अध्ययन किया है, तो डॉक्टर साहब से ही जानते हैं ये स्थिति क्यों है और इसके क्या क्या नुकसान आने वाले कल में होने वाले हैं। डॉक्टर साहब,
2: देखिए, जलवायु परिवर्तन आज के दिन में एक रियलिटी बन चुकी है और इसको अब नकारा नहीं जा सकता। आज के लगभग 10 साल पहले की बात है, सभी लोग कहते थे कि क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर संशय की स्थिति। लेकिन आज यह सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह स्पष्ट हो चुका है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और बहुत तेजी के साथ हो रहा है। बस मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह घोषणा की गई थी कि तापमान लगभग 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, लेकिन 2025 दिसंबर में ही यह तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। कहने का मतलब यह है कि तापमान की जो वृद्धि का दर है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और उस जो प्रेडिक्शन हुआ था वो 5 साल पहले ही पूरा हो गया। जहां तक भारत देश का सवाल है, मौसम का मिजाज कब बदलेगा है तो कोई नहीं जानता, लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार गर्मी बढ़ रही है, देखिए दिन का तापमान बढ़ना, पहले भी दिन का तापमान बढ़ता था, लेकिन आज के दिन जो सबसे बड़ी समस्या जो नई उभर के आ रही है, रात का तापमान खास करके अगर देखा जाए तो ब्रज के क्षेत्र में रात का तापमान लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस सुबह 6 बजे तक हो जाता था, लेकिन आज के दिन में पिछले आप 4 दिन की बात करते हैं तो रात का तापमान लगभग 30-31 डिग्री सेल्सियस रहा है। और यह अपने आप में पशुओं को खास करके, जो बिल्डिंग्स हैं, पशु हैं, रोड्स हैं, कुछ भी है, उससे जो गर्मी निकलती है, जो दिन भर तपती है तो रात में धीरे धीरे गर्मी निकलती है, लेकिन रात में भी तापमान अगर ज्यादा हो जाएगा तो यह जो साधारण प्रक्रिया है गर्मी को निकलने की, वो प्रभावित होती है। और इससे खास करके जो पशु हैं उनके लिए जो व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है, इसलिए पशुओं से जो ऊष्मा है, तापमान है, जो बाहर निकलती है वो निकल नहीं पा रही है, इसलिए पशु इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।
1: तो रक्षक, ये जो तापमान में इजाफा है, इससे उत्पादन पे, पशु स्वास्थ्य पे और मानव स्वास्थ्य पे, वनस्पतियों पे क्या क्या दुष्प्रभाव, जिसे आपने कहा कि 2025 तक जो अनुमान थे तापमान बढ़ने के वो बढ़ चुके हैं, भविष्य क्या है?
2: देखिए, भविष्य हालांकि सरकारें बहुत इस पर काम कर रही है, लेकिन मैं सबसे पहले दुष्प्रभाव दो चार बताना चाहूंगा आपको। उत्पादन में गिरावट, ये सभी लोग जान गए हैं कि हाँ, उत्पादन में गिरावट आ रही है, चाहे वो हमारे पशुओं का उत्पादन हो, चाहे जो हमारी फसलें हैं उनका उत्पादन हो, या इसके अलावा जो भी जो हमारा जो मनुष्य है, आप ये समझिए कि इस समय 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, 10 बजे से 5 बजे के बीच में काम करना लगभग दुश्वार हो गया। ऐसे में सभी का जीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि आने वाले समय में जो दूध का उत्पादन कम हो रहा है, फसलों का उत्पादन कम हो रहा है, साथ ही साथ जो गुणवत्ता है, जो उत्पाद की गुणवत्ता है, इसका इस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिस पर शायद नहीं कोई रिसर्च है। और जो रिसर्च हम लोगों ने काफी कुछ रिसर्च की, जिससे दूध की गुणवत्ता में काफी गिरावट आती है यदि तापमान बढ़ता है, इस पर बहुत कम रिसर्च हो रही है। यहां तक कि जो खेती के उत्पाद है, उस उत्पादन में भी जो गुणवत्ता है उसमें काफी कमी देखने को मिली है। तो आने वाले समय में उत्पादन कमी होने के साथ साथ जो उत्पाद की गुणवत्ता है उसमें जो कमी आ रही है, ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, किसानों के लिए और आम जनता के लिए।

0: दूध की गुणवत्ता की हम बात करें तो बढ़ने वाले जो तापमान है बांदा में, जैसे 48 डिग्री तक तापमान पहुंचा है, दूध की संरचना में उसकी गुणवत्ता में क्या परिवर्तन आता है?
1: देखिए, दो चार दिन अगर तापमान बढ़ता है तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन यदि तापमान अगर लगातार बढ़ता रहे, जैसे कि हम देखते हैं जून के महीने में और जुलाई अगस्त के महीने में जो 3-4 महीना होता है, यदि लगातार तापमान में परिवर्तन बना रहता है तो दूध में जो एपिथेलियल सेल्स जिसको बोलते हैं या सोमेटिक सेल काउंट बोलते हैं वो बढ़ जाता है। नॉर्मली यह जो है 50,000 से लेकर 1,00,000 तक का होता है, लेकिन जैसे ही जैसे तापमान बढ़ता है और यह लंबे समय तक लिए बढ़ता है, जो कि अक्सर करके जून जुलाई अगस्त में देखा जाता है, ऐसे में जो सोमेटिक सेल काउंट है यह लगभग 4.5-5 लाख तक हो जाता है और वह दूध जमता भी नहीं है। लोगों को लगता है कि बिल्कुल सही दूध है, लेकिन वास्तव में उन दूध में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो थन से निकलती हैं, और वह दूध वास्तव में देखा जाए तो पीना बहुत लाभकारी नहीं होता। इस बात का अंदाजा बहुत कम लोगों को है, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है।
0: इन सेल के बढ़ने से दूध में 50 और 100 आपने कहा और वो 4.5 लाख तक पहुंच रही है, तो इसका क्या दुष्प्रभाव मानव जीवन पर पड़ सकता है?
1: इसका दुष्प्रभाव मानव जीवन पर इसका अभी तक स्टडी नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ता है। एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, जो हमारे पशु हैं, पशुओं का देखिए उनका जो पेट होता है बहुत बड़ा पेट होता है, जो दूध देने वाले जितने पशु हैं, गाय भैंस बकरी और भेड़, इनमें होता क्या है, जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता है ना तो इनके पेट में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं इनसे जहरीले टॉक्सिन्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, और गलती से भी अगर जहरीले टॉक्सिन्स यदि ब्लड में आ गए और ब्लड से अगर ये पहुंच गए दूध में, तो ये बहुत ही मतलब नुकसान, बहुत ज्यादा से नुकसान हो सकता है। और ऐसी स्टडीज हमने अपने यहाँ पोल्ट्री बर्ड्स में की हुई हैं, और हमने देखा है कि जैसे तापमान बढ़ता है वैसे ही जो है टॉक्सिन्स बननी शुरू हो जाती हैं, और ये टॉक्सिन्स नुकसान पहुंचा सकती हैं आम जनता को, और लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। लेकिन जो इसका दूसरा पहलू है कि कैसे आखिर में बचा कैसे जाए, तो बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे हम अपने लिए, आदमी अपने लिए करता है, खाने में काफी कुछ बदलाव करता है, रहन सहन में बदलाव करता है, वैसे ही हमें अपने पशुओं को या जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनको कैसे गर्मी के समय में उनसे बचाया जाए, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। हालांकि सभी जितने भी किसान भाई उनको पता होता है कि हमें गर्मी के समय में क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ 2-4 चीजें जो बहुत आसानी से की जा सकती हैं हर किसान कर सकता है मैं बताना चाहूंगा, खास करके अभी गर्मी का जो मौसम है जहां पर जो आर्द्रता है वो कम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ऐसे समय में खास करके आपको 11 बजे के बाद पशुओं को या तो पेड़ के नीचे रखें, और पेड़ के नीचे अगर नहीं, पेड़ अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप अपने घर के अंदर रखें। ध्यान दें कि कम से कम पशुओं को कम से कम 2 बार अवश्य नहलाएं। गाय आपको परेशान करेगी शुरू शुरू में, क्योंकि गाय के ऊपर जब पानी जाता है तो वो पानी से थोड़ा सा दूर भागती हैं, बचती हैं, लेकिन यदि हम उनको आदत डालते हैं तो 2 बार अगर उसको स्नान दे देते हैं, एक लगभग 12 बजे के आसपास और दूसरा लगभग 4 बजे के आसपास, बहुत ज्यादा उनको आराम मिलता है। और तीसरी चीज, जहां भी हम रखें ये इस बात का ध्यान दें कि वेंटिलेशन हो, मतलब हवा का आदान प्रदान सही से हो। यदि हवा का आदान प्रदान नहीं हो और आप छाया में भी रखते हैं, जैसे टिन का शेड है, एस्बेस्टोस का शेड है, कभी भी एस्बेस्टोस और टिन के शेड में इस दौरान कतई नहीं रखना चाहिए जानवरों को, अन्यथा स्थिति में जानवर का जो तापमान है नॉर्मल लगभग 102 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 101.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वो बढ़ करके 104-105 हो जाता है, किसान को समझ में नहीं आता है कि वो क्या रहा है, और वो फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको बुखार कम करने की दवा दे देता है और बिल्कुल एक काम नहीं देता है। एक साधारण सा तरीका है कि उस पर पानी जो है उसको पानी से नहलाया जाए। और हमारे जो भैंसे हैं उसके लिए मैं बताऊं कि भैंसों का सबसे अच्छा तरीका होता है, अपने तालाब, गांव के तालाब को सुरक्षित रखिए, संरक्षित करिए, पानी उसमें इकट्ठा होने दीजिए, और उनमें जानवरों को, गाय भैंसों को खास करके तालाब में लेकर जाइए, कभी भी हीट स्ट्रोक या भैंसों को कोई दिक्कत नहीं होगी।
2: तप रहे धरती आसमान, पशुओं पर क्या होगा दुष्प्रभाव?

जानकारी दे रहे डॉक्टर ब्रजेश यादव। तो किसान भैया देखो, मौसम पूर्वानुमान आपके मोबाइल पे मैसेज आ ही रहे, और अब झमाझम बरसात है रही है। निश्चित रूप से आपको हमारे कार्यक्रम के माध्यम पे समय समय पे खेती किसानी पशुपालन से जुड़ी हुई जानकारी हम देवी को प्रयास कर रहे हैं। तो अगले कार्यक्रम में फिर नए विषय और विशेषज्ञ के संग आप सबसे होगी मुलाकात। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे दिलीप यादव। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और अब प्रस्तुत है फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन।

हरिहरन और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म थी शुभ महिमा, बोल महेंद्र दहलवी के थे, धुन तैयार की थी अरुण पोडवाल ने।

जो मुझ में नहीं।

सुमन कल्याणपुर को अभी आपने सुना फिल्म थी गीत, बोल प्रेम धवन के थे, धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने।

0: लता मंगेशकर के गाए महबूबा फिल्म के इस भक्ति रचना के साथ ही आज का संध्या वंदन कार्यक्रम आप यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस साहित्य कार्यक्रम में आज सुनते हैं ब्रज नवकथा संबंध। वार्ताकार हैं संतोष शर्मा।
1: आज खेत के काम में अवेर है गई गोपाल को, सो सोच रहे हो केला मढ़ी बारे मंदिर पे थोड़ो विश्राम ले लूं, फिर घर को जाऊंगो। वैसे दोपहरी पड़ रही है।

पानीपत तपी के फिर चलूंगो। सो घंटी बजाए के मंदिर प्रांगण में हाथ जोड़ो और पानी पी के जैसे ही बैठवे को भयो तो प्रांगण के नीम के नीचे दुलारी ताई बैठी दिख गई। मैंने सोची कि दोपहरी में तो ताई अपने द्वार पे बड़ी बूढ़ी की महफिल जोड़ के बैठे, पर आज जे इकली यहाँ कह कर रही है, ला पूछूं तो सही। ताई राधे राधे। अरे राधे राधे गोपाल, बड़ी उम्र होए, आज तुम यहाँ का कर रही हो, त्यारी महफिल कहाँ गई? अरे लाला जीव चैन में ना है तो क्यों कहा है गो? बेटा कछु पूछे मती ना, बंसी की लाली को मुँह देख के दुखी हूं। अरे हम बेताई, बंसी भैया लाली के ताई छोरा ढूंढ रहे, मिलियो के ना है? मिलवे कु का खोए गयो सो? अरे ना है ताई, भैया कह रहे कि मनपसंद छोरा देख रहा हूँ, भाई की पूछ रहा हूँ। अरे बेटा मन पसंद का, वो तो राम की जेठ पकड़नो चाहवे, पूरी भुजा पकड़नो चाहवे। अब तू बता कबू ऐसा है सके का? जाई औगार में दो बरस है के तीसरी लग गई, बाप की बुद्धि को देख के छोरी को मोह कुमलाए गो है। अब लाला रे छई छापरी बखत ते अपने घर जावे तो बेटी सुखी और मैया बापो खुश। बता ताई, तो तुमने भैया को समझाओ ना है? अरे लगन दे तब ना, अपई के आगे वो काऊ की सुने सो। तू बता गोपाल, मैंने ना करी तीन तीन चोरीन के ब्याह, सो तेरे ताऊ मरे पीछे? हाँ सो तो है ताई। गोपाल और तो कहा बताऊं बेटा, कि छोरी को अम्मा अम्मा कहते कबो मोहनाव सूखतो, सो अब मैं ही कछु कहूँ के बोलूं तो बोले नहीं, चुप सी रही आवे। अब लाला बीस मोह और बीस ही बात बेटा, बाके संगते क्यों छोरीन के ब्याह है गए? तब ही बंसी आवाज दे तो भय आयो, अरे मैयो तू यहाँ बैठी है, माँ त्यारी फ्रेंड याद कर रही है तो को द्वार पे, भार में जाओ फ्रेंड और भार में जाओ तू संग में। बंसी भैया राधे राधे। राधे, अरे गोपाल और सुना कैसी कट रही है? बढ़िया हूँ भैया, पर ताई कैसे नाराज कर रखी है तुमने? ले मैंने काई को नाराज करी है? लाली को छोरा देखा डोल रहा हूं फिर। अरे लाला जे सरे ऊंट सो कल्लू देख के आयो है। अब गोपाल तू बता, घर बार सही मिलेगा तबई तो करूंगो, अब जाब तू तो छोरा बढ़िया मिले तो घर मकान को ठिकानो ना है, और घर मकान बढ़िया हो तो छोरा को और छोर ना है। देखो बंसी भैया, अम्मा अपनी जगह सही है, सोच समझ के काम करो, सही उम्र पे छई छापरी को ब्याह है जाए तो गंगा जी नहाए ले समझो। जब ताई जी ने तीनों जी जी के ब्याह करे तो कहाओ, और अब उनके कहना है बता। अरे तो गोपाल अब तू ही समझाए, मैं कह करूं? ए भैया छोटो है के मैं का समझाऊं, पर मैं तो बस इतना कहना चाहूंगो कि भैया जे संस्कार चले आए कि छोरी छोरा के भाग्य थे खाली घर भरो भरो है जाए, और ना है तो भरी फुलवारी खाली होत देर ना लगे भैया। एक उदाहरण को तो बताऊं कि सकल भुवनपति सम्राट की बेटी, दूसरे परम चक्रवर्ती महाराज की बहू, और प्रभु के अवतार कहे गए भगवान जी की पत्नी माँ सीता, बता उन्होंने कहा सुख पायो? बंसी गोपाल को मोह फारे देख रहे हो। गोपाल ने समझायो, भैया कर्म की गति ना तुमने देखी ना मैंने। ए भैया सबई मैया बाप चाहे कि उनकी बेटी खुश रहवे सुखी रहवे। बंसी ने अपनी बात रखी तो गोपाल झट बोलो, तो भैया सुख की तारीफ तो बेटी के ही हाथ होवे। देख भैया आज के समय में समझदारी की तो जई मांग है। का कर रहो है? केवल तीन बातन को ध्यान रखो जब बेटी को संबंध करवे जाओ। पहले तो छोरी छोरा मेल मिलाऊ हुए, दूसरी काम छोटो होए के बड़ो, चार पैसा कमाए बेवारो छोरा होए बस मोह देखा ना होए, और सबसे बड़ी और आखिरी बात बताऊं भैया बोले कि छोरा या छोरी के परिवार में कोई बड़ी अब बारो ना होए। समझ रहो ना मैं क्या कह रहा हूं, कि कोई अब भर रहो होए। बंसी ने मूड हलायो के बात तो सही कह रहा है, और बाकी तो भैया अपना अपना कर्म है, कर्म की गति सबसे न्यारी है भैया, अगर जा बातें देख के तुम संबंध

0: तो कर पाओगे। और मान लियो छोरा पे दुनिया भर की जायदाद पैसा अमेला झमेला होए और छोरा हमारी लाली को मेल मिलाऊ न होए, तो जीवन भर लाली कुढ़ेगी के ना है? भाई गोपाल, बात तो तू सही कह रहा हो है। 2.5 साल में मैं इतनी सी बात जब मेरे सरे ऊंट से दिमाग में आई ही ना, सांचू गोबर भर रहा हो रे। जाए सुन के अम्मा घुन्ना भी लगी। अरे सरे ऊंट को गोबर हुआ तो ठीक हो, बाऊ में तो कीड़ा पड़ रहे जाके। अरे मैया, जा कीड़ा हुए अब तू ही निकारी हो, अब चल घर, सब देख रहे हैं तो मैं बैठी है तेरी रेंड फिरेंड, चल घर चल। कहा करूँ घर जाके, मैं ना जा रही, जू दुखी हो तो मेरो। अरे मैया चल तो सही, बेटा तेरी सरी बुद्धि को देख के बेचारी बहु परेशान होवे, और तेरी जब बुद्धि की वजह से बहु परेशान होवे तो बात तुम दोनों की चिंता है देख के, फिर लाली को मोह को मिलावत तो है। अब बता मैं कहाँ जाऊं, हैं सियानी समानी छोरी घरम बढ़ रही है और तू भर बे जा रहो राम की भुजा, हैं अब बाऊ में फिर आ जामे बे परोसी न ताही ने देवे जी, अवई ना भाव का त्यारी लाली को संबंध खाऊ ही न की कढ़ी है। मैं ना जा रही तो का यहाँ भोले बाबा जेट भरेगी, भर लूंगी तो काय भोले बाबा सुनेंगे ना। अरे मैया तू चल तो सही, चल देख 2 महीना के भीतर लाली को मेल मुलाऊ छोरा देख के ऐसा ब्याह करूंगो कि तू वो कहवेगी कि हाँ सांचवी सरा ऊंट है। या शब्द को सुन के अम्मा के चेहरा पे हल्की सी हंसी आ गई। बाकू देख बंसी मन ही मन सोचवे लगे हो यार हूं तो सांचवी सरा ऊंट हूं, इतनी सी बात ना आई मेरी दिमाग में। मैया मोए और भैया ने कैसो समझाया था ता मैं मोते छोटो है। चल देर ते आई पर समझ आई तो सही कि मेरी मैया और मेरी बेटी के चेहरा की उदासी कौन सी खुशी चाह रही है। देर सही पर मिली तो सही, और लाली के सुखी जीवन के विचार कर बाके संबंध की चिंता फिकर को गैलई में फेंक और तीनों प्राणी हंसते मुस्कावते भय गांव में घर की ओर चल दए।
1: संबंध। अभी श्रोता सुन रहे थे ये ब्रजनव कथा, वार्ताकार थे संतोष शर्मा। साहित्य कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं ये लोक रचना।

प्रमोद कुमार शर्मा के गाए इस लोक रचना के साथ ही आज का ब्रज साहित्य कार्यक्रम आप यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही देर में श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि

0: अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि आज प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
1: मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
0: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांव के विकास से ही साकार होगा।
1: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के सामयिक प्रयास है और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गाँव विकसित होंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत मां का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कृषि राजस्व के क्षेत्र में तमाम रिफॉर्म का श्रेय उन्हें जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गांव, खेत व खलिहानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। शासन की योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।
1: देश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है और इसलिए विकास के एजेंडे में किसान होना चाहिए, किसान सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए, उन्हें ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं तैयार होनी चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल पीठ ने दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल News on AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्थापित हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई का उद्घाटन और अवलोकन किया। ये इकाई जनभवन गौशाला में गौवंशों को वर्ष भर मानक के अनुरूप पर्याप्त पौष्टिक और रसायन मुक्त हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम हरा चारा उत्पादन करने में सक्षम है। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के विशिष्ट शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के साथ साथ विद्यालयों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के मुरान कादर गांव के पास बीती रात बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। SDRF की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री योगी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बीती देर रात आए तेज आंधी तूफान, बारिश व आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर 3 घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर परिसर में बने मां भगवती के मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंभरा ने ध्वज को शिखर पर स्थापित किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्कृति विभाग द्वारा संग्रहालयों की स्थापना, विकास एवं क्यूरेशन कार्य की 17 नवीन परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के तहत संग्रहालयों की स्थापना, उच्चीकरण, नवीनीकरण, क्यूरेशन आदि के कार्य कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीनों के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का गिरने से 6 मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में श्रमिकों को सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीम अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास है।
2: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत

श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा प्रेषित 7:15 पर भेजे गए संदेशों को शामिल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: गीत गुलशन बावरा का था, धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार, मोतला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्माला आरती गौरी, ओम सुरलकर, मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैंटर से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल बेबी सिया यादव, जालना शहर से सोमनाथ यादव, गीता और ओम यादव, पलहरी छत्तीसगढ़ से दिनेश नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, तनुजा, ईशांत देवांगन, धंतरी की भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेन मणि और नोखेलाल वर्मा, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति योजस्वी यादव, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर एमेकर, प्रमोद प्रदीप एमेकर, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन एले, नवदीप विश्वदीप, अशोक एले, श्री बटनेरा कोला से अरुणा बलदेव, दामोदर आदित्य दामोदर, करमवीर हाउस भूचा कैचिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह चौड़ा, मनजीत, करणवीर, करण, दपिंदर, वीरेंद्र, कुलदीप, सीमू, एकम, दबाना, बिचूत, रसीड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डीकेश साहू, पहाड़गंज मुल्तानी ठाणा से अनिल मोहन, उषा टिल्लू, मधु नायक, गुजरात गांधीगाम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचित वायर, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सर्वत देशमुख, सानवी और कल्पना देशमुख, काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेशे, सुषमा परिधि, मायरा सुरेशे, गांव चौलादा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, कर्मा चौक लोहरी डीड से भाई यशवंत साहू, रमेशिया हर्ष अंश साहू, ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जामनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति, विपिन, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल, नलेश्वर नगर नरपेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान, आशीष मोहरकर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, बेबी वैदेही, अंकिता, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मेघलानी, बबीता मेघलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, रिंगरी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, डोमरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका बेबी अनिष्का तन्मय गजबिये, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय, सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार कली, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता निकेत, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका सानिका, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा अविका, विशाखा सोनवने, छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब, सलमा, रेहान और फैजान, अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज अरहम और उनके समस्त परिवारी जन, ग्राम पजनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसौलिया। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले जिला प्रशासन की ओर से जारी आवश्यक मौसम संबंधी सूचना सुनते हैं।
1: साधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी 24 घंटों में खराब मौसम, तेज आंधी

0: भारी वर्षा एवं वज्रपात की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सभी नगर व क्षेत्रवासियों से अपील है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षित स्थानों पर शरण लें एवं पेड़ों, बिजली के खंभों तथा कमजोर निर्माणों से दूर रहें। मौसम खराब होने पर खुले स्थानों में खड़े होने से बचें तथा बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें एवं सतर्क रहें। धन्यवाद।
1: अरे अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को भी आपने सुना, फिल्म थी असली नकली। गीत हसरत जयपुरी का था, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा था ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह नगला राणा से, शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से, राजू लवानिया खंदौली आगरा, यादराम जूस फार मथुरा, वीरेंद्र सिंह मंडी चौराहे मथुरा, नेतपाल सिंह नगला विजयी राया, भजन लाल कुमार राया, महेश चंद सदर बाजार मथुरा, सत्येंद्र संचौलिया जला जालौन से, पंचम लाल चतुर्वेदी दौसा राजस्थान से, साधुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ा और चंद्रकला।

रेवाड़, पिपीरिया से कमल कान गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, जिन रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू और तरुण यादव, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, बसंतराव भोजने, पी एस नवानकर, तुषार कारंगले, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिट्टा, अलका मिड्डा,

15 पे ये संदेश कृष्णा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े योगिता कुमारी पड़ाली पार्थ समस्त हागोड़े परिवार सोंगा मगर लोट छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित कुमार देविका रानी गजेंद्र कुमार हेयांश कुमार चंदन संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर अब्दुल हक जियाउल हक मोहम्मद उमर राजेंद्र कटारे भावी नीमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोतली उषा वैष्णवी पूनम युवराज गोतली तालुका निवासा खुपट्टी महाराष्ट्र से बंडू माया शिवांश चंद्रकला देवीदास पोपलघट चंडीगढ़ से सतीश अनेजा विमल अनेजा व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव देवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निघत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अब्बास और समस्त अब्बासी परिवार जमशेदपुर से हरजर्दन सिंह भाटिया अंजल भाटिया सोनू और पप्पी भाटिया पीरा बाजार झुमरी तलैया से अजय है कुमार सनातनी शिवानी कुमारी प्रियंका कुमारी साहू रिया जिया टूसी आयुषी अनुद्ध मुन्नी देवी शाह जयप्रकाश साहू बसंत लाव और इनके सभी परिवारिकजन धमड़गांव जिला बुलटाणा महाराष्ट्र से समर्थ दादा देठे पाटिल भागवत देठे लक्ष्मी कुमारी सानिका देठे पाटिल तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बरुद्दीन फजान फरहान साइमरा आजमीन मधुबनी बिहार से भाई नवीन सिंह ज्योति श्वेता स्वाति सुशांत चुलबुल रानी हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोट के नंदा बोट के हनुमान बोट के शाहनगर यवतमाल से राहुल मनवर सरला विशाल चेतन बेबी प्रियांशी रोहिणी मनवर करताल हैदराबाद तेलंगाना से कानू गोपाल महेश्वरी प्रमलिका विश्ववर्धन विघ्नेश शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन थरदी सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा सुनीता हर्ष कुमार विनीत कुमार कुमारी कृष्टि पटवा कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर विजयलक्ष्मी सावनकर ग्राम पंचायत बठेनापाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा अंजनि ज्योति प्रहलाद राजेंद्र उमेश और पमिला बंछूर गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता पद्मटा किस नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। और ये अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में खानदान फिल्म का ये गीत।

खयाम के संगीत निर्देशन में नक्श लायलपुरी की शब्द रचना भी आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म थी खानदान। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन, चांदनी चौक कंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभावती, लकी, विकी, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और रामेकर परिवार, गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता, अंजुम और नजमुल हौदा, बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोधबड़े, अनीता, रमेश राव काठोड़े, मुजफ्फरपुर से आर्यन राज, रोहित और पीयूष कुमार, नरकोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी, टिंकर, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और देशा गोस्वामी, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश वर्मा, गौरव गर्मा, हर्ष आहूजा, दात्री गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल किरण, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज और काजल, लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार, ध्रुव, संतोषी, निम्मी, पम्मी, निशांत, ध्रुव, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष, शिवन्या और अन्नू गोस्वामी, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय, कारी मीना, कारी पुंजरा, जारती, आकर

शान जयशी, कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले, सुजाता और प्रतीक हेवराले, गाड़के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षण और पूरा लोखंडे परिवार। 7:15 पे संदेश, गणेश अविकार्ड, श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका सानू, अर्चना, पुनावली से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका, साइशा, गंगचला, सहरसा बिहार से राधे कुमार, विद्यार्थी, सविता, राकेश, राजीव, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, अच्छे लाल, बुलकावाली और फलना झा, सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम, वसीम, रूबीना, आरिच और इनके सभी परिवारीजन, चकला बाजार सामना शहर से पप्पू राजा, संगीता रानी जिंदल, सुनीता रानी जिंदल, हसमुख लाल जिंदल और इनके सभी परिवारीजन, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, निवृत्ति संजय कुमार चौहान, बुलठाणा वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली, श्लोक कुमार, बुलठाणा इस्लामापुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला, सुमित कुमार, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल, निशा, छत्रपति जी संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राजी, श्रीमती शीतल, राजेश, अम्बागढ़ चौकी से छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सभिया, अनस और रेहान, तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुड़वन शिवा, श्रीमती कोणा शिवा, आयुष, विवेक, बेबी आयुषी श्रीवास, भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, कन्नूलाल, रजक, मुरली, छत्री, डेर पाटन गुजरात से धीरज, पीट, राबड़ी, हजारीबाग झारखंड से रुद्र प्रताप, दादा ठाकुर, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, कुसुम, शारदा, रूपा, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्म मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापाजी, नाना चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और डकू भविका सिक्का, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू, बेड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तन्या, कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार, साई गायकवाड़, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहतरा से दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधाना खुराना। और अब आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी का हृदय से आभार। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: ये थे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, शैलेंद्र सिंह। फिल्म परवरिश में गीत मजरू का था, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं जिला प्रशासन की तरफ से जारी मौसम संबंधी आवश्यक सूचना।
1: साधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी 24 घंटों में खराब मौसम, तेज आंधी, भारी वर्षा एवं वज्रपात की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सभी नगर व क्षेत्रवासियों से अपील है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षित स्थानों पर शरण लें एवं पेड़ों, बिजली के खंभों तथा कमजोर निर्माणों से दूर रहें। मौसम खराब होने पर खुले स्थानों में खड़े होने से बचें तथा बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें एवं सतर्क रहें। धन्यवाद।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्ताना फिल्म का गीत अभी आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत आनंद बख्शी का था, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू के गए सोल्जर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति पर रचनाएं।

शारदा सक्सेना और मनमोहन पहाड़े को भी आपने सुना, आइए सुनते हैं हरिराम द्विवेदी की शब्द रचना शारदा वेलणकर की आवाज में।

हरिराम द्विवेदी की शब्द रचना अभी आपने सुनी शारदा वेलंकर की आवाज में FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं काश आप हमारे होते फिल्म के कुछ गीत।

अंडर सपोर्ट वाल और सोनू निगम को भी आपने सुना। गीत प्रवीण भारद्वाज का था, धुन तैयार की थी आदेश श्रीवास्तव ने। और ये अब सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में काश आप हमारे होते फिल्म का अगला गीत।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम है, समय श्रोता सुन रहे हैं काश आप हमारे होते फिल्म के कुछ गीत FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

अलका याग्निक के गए काश आप हमारे होते फिल्म के इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और

0: पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम

0: गुणवत्ता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
1: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहां उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है।

0: उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। 6ठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंक की विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और

0: कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advanced to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said, securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
2: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
1: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नवरंग।

कमाल खान, अलका याग्निक और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म थी कहीं प्यार ना हो जाए, गीत सुधाकर शर्मा का था, धुन तैयार की थी सुरेश लालपाली ने। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए, खड़ग सिंह छौकर एडवोकेट, प्रकाश नगर, मथुरा से। नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान आशीष। गांव कुम्भारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना, आक्सा, नाजिया इब्राहिम और अदीब हसन। छत्रपति जी संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, श्रीमती शीतल राजेश। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय,

ज्योति राय, गाजीपुर से प्रतीक पति रोशनी राय, प्रांजल राय, थानी नाथुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमोल बाठे, छतपत जी शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन और अक्षय सेन, पदमटा की नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, पटेल नगर मलूट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगन दीप, आरजू और गुड्डू, भरपड़ बकाल बुलठाणा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे, बुलठाणा बड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभताई, दीपाली, श्लोक कुमार, इस्लामापुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमेध कुमार, सातुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंदकला रेवाड़, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई, जूही इकबाल, दुखना सदफ और इमरान, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भट्ट, नीलम भट्ट, नितिन, पलक, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश भट्ट ने। और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कहो ना प्यार है, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लकी अली और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से। दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वधुरा, वसुधा वज्र सिंह, सोंगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, बेरडई मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तन्या, नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज और पीआर जैन, गांव खारिया दाढ़ी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, अर्जू और नव्या, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा, मोहम्मद अशफाक, अफरीन, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से

0: Aswan Khan, Aisha, Sabiha, Anasa aur Rehan Bagheera Durg se Santosh Namdev, Sarthak, Samarth aur Shaurya Namdev Kurti Road, Manpur se Vijay Ved, Rani, Mahima, Neetu aur Vedic Ved Gram Lohri, Jila Khandwa se Rajesh Kumar Rahul Kumar, Sheila aur Gayatri Model Town Karnal se Sudhir Nutan, Sandeep Kuklani, Jagmohan Prajapati, Pratibha Sharma aur inke sabhi saathi jan Viram Gram Gujarat se Ajit Bhavsar, Pramila Bhavsar aur Parveen Sultana Gram Pehra Durg Chhattisgarh se Poshar Banchor, Chandkiran Preeti aur Chhaya Banchor आप हैं मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं जिला प्रशासन द्वारा मौसम के बारे में आवश्यक सूचना
1: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी 24 घंटों में खराब मौसम तेज आंधी भारी वर्षा एवं वज्रपात की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सभी नगर व क्षेत्रवासियों से अपील है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें सुरक्षित स्थानों पर शरण लें एवं पेड़ों बिजली के खंभों तथा कमजोर निर्माणों से दूर रहें मौसम खराब होने पर खुले स्थानों में खड़े होने से बचें तथा बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें एवं सतर्क रहें धन्यवाद
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को भी अपना सुना। फिल्म थी काला पत्थर, गीत साहिर का था, संगीत दिया था राजेश रोशन ने। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमार संचित वायल, प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, सरवद सानवी और कल्पना देशमुख, गांव हीरावाली फजल का पंजाब से सुभाष, गोदारा विमला, पार्वती हिमांशु और इनके सभी परिवारीजन, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर बिस्टर सुरेशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरेशे, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया अनस और रेहान, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिकलानी, बबीता सुभाष, बब्बू और डब्बू, कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और समस्त अब्बासी परवर, धमदाक राम सुखरी कला से अमित चंगेल, शकुन आरुषि, आंशिका आदित्य, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़

कर्से उत्तम कुमार बघेल रुक्माणी बघेल, पतरूडा से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी अंकुर और सुनील जनागल, धंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेन मणि, नोखेलाल वर्मा ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को अभी आपने सुना। फिल्म थी वंश। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर एमेकर, प्रमोद प्रदीप एमेकर, ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, ग्राम भीलखेड़ी तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से धनराज बैरागी, सीमा किट्टू श्री वैष्णव, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी को स्वामी लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल निम्बल मीनाक्षी निशा तुलसी और देशा गोस्वामी, कर्मा चौक लोरीडीट से भाई यशवंत साहू, रमेशिया हर्ष और अंश साहू, गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शोभुक्ता अंजुम और नजमुल हौदा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, गौरव शर्मा, साइना और निवान शर्मा, सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता निकेत रोहिणी, ऋषिकेश जीविका, सानिका पुनावले, अजय सोनवने, करिश्मा अविका, विशाखा सोनवने, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद मेहरा चाह, गुलाम साबिर, भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, मुतला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्माला सुरलकर, विद्या कुमारी, गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक ने और ये अब सुनते हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दो कलियों फिल्म का गीत। गीत साहिर का है, संगीत रवि का। पसंद करने वाले श्रोता, चकला बाजार सामना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, सुनीता रानी जिंदल, हसमुख लाल जिंदल और सभी परिवारी जन, कुंभारकरी कोलगांव से पांडु रन चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा अभिषेक, सार्थक प्रथमेश, संतोष पांडुरंग, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, जयदेव तामोरिया, तुषार मास्टर अल कबीर, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन एले, नवदीप एले, विशदीप अशोक एले, श्री बडनेर अकोला से अरुणा बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर,

पदमपुर जलाशय गंगानगर राजस्थान से बेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा, कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका सुशांत, इनके साथी सुरेश चौरसिया, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा ने

साहिर की शब्द रचना भी आपने सुनी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म थी दो कलियां, धुन तैयार की थी रफ़ी ने। और आज इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की मनीष श्रीवास्तव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102 दशमलव तोमेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनते हैं जियाउद्दीन की गाई चंद गजलें, तत्पश्चात केएल जुनेजा का गायन। सबसे पहले सुनते हैं जियाउद्दीन की ये गजल।

बशीर भट्ट का कलाम अभी आपने सुना जियाउद्दीन की आवाज़ में, जियाउद्दीन के ही स्वर में सुनते हैं अगली गज़ल।

మగ ని స ద ని స గ మ ద ని స ని ద మ గ స ని స ద ని ద స ని ద మ గ మ ద ని ద స

सुगम संगीत में अब आइए सुनते हैं केएल जुनेजा की आवाज़ में कबीर की ये भक्ति रचना।

सुगम संगीत में अभी श्रोता सुन रहे थे जियाउद्दीन और केएल जुनेजा को एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनते हैं उस्ताद अमीर खान साहब का गाया राग दरबारी में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत की है रमजान खान ने।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी श्रोता सुन रहे थे उस्ताद आमिर खान का साहिब का गायन। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात के 11 बज चुके हैं, कुछ पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की